हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि। तदनुसार 18 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन

0: शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए करें वंदना इस पावन धरा की।

0: और शबद कीर्तन के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं खेती के बाद। आज का विषय है राहर की खेती में रोग नियंत्रण, वाचन स्वर रूपेश कंवर का।
1: किसान भाइयों राम राम, जय जोहार। मैं वापन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। खरीफ सीजन में हमारे किसान भाई मन धान पान के संगे संग दलहनी तेलहनी फसल घलो अपनात हवे। कतो किसान भाई मन अभी बेरा में देखी तो जो राहत की खेती हवाए ओला अपना चुके हवे। कोनो भी फसल अपनाथन किसान भाई हो तो मैं कई प्रकार के रोग व्याधि कीड़े लगे के संभावना घलो रहते। बेरा राहत अगर हमन मन नियंत्रण पा सकत हन तो हम फसल में ज्यादा से ज्यादा हम पैदावार घलो पा सकत हन। और आपन जानते हवा कोनो प्रकार के कीड़ा मकोड़ा बीमारी अगर आवत हवे तो मैं हमन 30-40% तक जो फसल पना है वहाँ नुकसान होने के संभावना होते, यानी कहीं तक घाटा हो जाते हैं। राहर के खेती में प्रमुख रोग और नियंत्रण के गोड़ बात करी संगवारी हो, उकठा रोग। लक्षण के बात करी संगवारी हो तो पत्ता प्यूरा प्यूरा होते और मुरझा जाते, पौधा पूरा सुखा जाते और जड़ कति ले देखो तो भीतरी भीतरी वह करिया करिया घलो दिखाई देते। नियंत्रण के बात करी संगवारी हो तो रोग रोधी जो किस्म हवाए ICPL जो रोग रोधी किस्म हवाए ओला हमन ला चयन करके बुआई करना चाहिए। संगे संग हमारा जोन कृषि विस्तार अधिकारी है या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हवाए उनकर करा सलाह लेके हमारा जोन बीजा हवाए ओला हमारा बुआई करना चाहिए। एकर से हमन कहीं कहीं हमन निदान पा सकत हम। एकर संगे संग संगवारी हो जोन भी फसल अपनावत हन तो सबसे पहले हमारा जोन बीजा हवाए बीजा के हमारा उपचारित करना बहुत ज्यादा आवश्यकता होते। कई बार ऐसे होते कि हम बाजार हाट जाते

0: अब बजार हाट में जौन भी बीजा मिलते ओला लाथन और सीधा हमन खेत में छिड़काव कर देतन। एकरो से कई प्रकार के जौन बीमारी रहते वह पनपते और हमारे फसल ज्यादा से ज्यादा हमारा नुकसान करे के संभावना घलो करते। तो सबसे पहले हमारे बीजा उपचार करना बहुत आवश्यकता होते, जैसे कि टाइकोडर्मा 4 ग्राम बीजा के हिसाब से हमारा उपचारित करना बहुत आवश्यकता होते। एकेठक भुइया में अगर हम लगातार एकेठक फसल अपनावत हन तो एकरो माध्यम से कहीं न कहीं बीमारी लगे के या रोग लगे के संभावना घलो होते। एकर खातिर आप मतलब हम आए दिन अपन रेडियो के माध्यम से यही बतातन फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनावत हन संगवारी हो अगर भुइया में जो रोग व्याधि रहते ओकर से मन निदान पा सकत हन। फसल चक्र अपनावत हन संगवारी हो तो ओकर से फायदा ये होते कि उमा के माटी की उर्वरक क्षमता भी बने रहते, संगे संग नुमा नमी घलो बने रहते। फसल चक्र अंतर्गत हमन राहर के बाद हमला जोंधरी है, धान है, तिवरा है, बटकर है, एकर हमन खेती कर सकत हन। और अगर हमन तिवरा है, बटकर है, अकरी है, एकर खेती करत हन तो जो भुइया हवे वो भुइया के नमी क्षमता बढ़ाते, संगे संग उपजाऊ क्षमता घलो बढ़ाते। तना गलन एक लक्षण के बात करी संगवारी हो तो खाले कति के हिस्सा काला धब्बा दिखाई देते और धीरे धीरे करके जो पौधा हवा वो गिर जाते। एक नियंत्रण के गोड़ बात करी संगवारी हो, खेत के पानी ला निकासी पर अच्छा मल व्यवस्था करना चाहिए। काबर की जितके ज्यादा पानी के ठहराव होही उतके ज्यादा हमारे जो फसल हवा वो नुकसान होके संभावना होते। एकरे खातिर हमारे ऐसे भुइया की चुनाव होना चाहिए जेमा हमन पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से कर सके। कापर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के अगर हम छिड़काव करतन तना गलन रोग हवा ओकर से हमन निदान पा सकत हन। फली छेदक लक्षण की बात करी संगवारी तो फली के अंदर मा कीड़ा भराए रहते और वह पूरी तरह से जो फल रहते ओला नुकसान पहुंचा देते। नियंत्रण की बात करी कीट रोग के संग हमला नीम तेल के 5 ml प्रति लीटर, मैकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर 15 दिन के अंदर 2 बार हमल छिड़काव करना चाहिए। एकर से हमन निदान पा सकन। पत्ती धब्बा रोग एक लक्षण की बात करी संगवारी जो पत्ता हवा वो गोल गोल और भूरा भूरा घलो दिखाई देते हैं। एकर नियंत्रण पर हमला मैकोजेब 2.5 ग्राम कापर ऑक्सोक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिला के अगर हम छिड़काव करतन तो जौन पत्ती धब्बा रोग हवा ओकर से हमन निदान पा सकत हन। बेरा रहता अगर हमन रोग और कीड़ा चिन्हारी करत हन तो कहीं न कहीं एकर से हमन निदान पा सकत हन।
1: एपिसोड नंबर

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मान तक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर

नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: श्री राम चरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:45 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: माता पिता की कमजोरी हुआ करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो जिसको जितना अधिक चाहता है वो उसके लिए उतना ही चिंतित और दुबला हुआ करता है और उसको उतनी ही सुरक्षा और उन्नति देने के लिए बेचैन हुआ करता है। शेक्सपियर ने इस तथ्य से मिलता जुलता थोड़े अतिरिक्त भाव को जोड़ते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति जिसे जितना अधिक चाहता है वो उसके बारे में उतना ही अधिक संदेह किया करता है। इस कथन को हम इस उदाहरण से समझें कि यदि बच्चे को स्कूल से वापस आने में थोड़ी भी देर हो गई तो माँ आदि को तरह तरह के संदेह होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे को किसी अनजान व्यक्ति के साथ हंसते बोलते देख लिया तो उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के संदेह पैदा हो जाते हैं। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति उसका ध्यान ज्यादा रखता है जिसे ज्यादा चाहता है। जैसे सामान्य स्थितियों में माँ बेटे का, पिता बेटी का और दोस्त दोस्त का। ध्यान रखने की ये बात बेजान चीजों पर भी लागू होती है। सफर करते समय सैकड़ों लोगों के सामान के बीच हमारी निगाह अपनी पोटली पर ही रहती है। जब अपने आदमियों और अपनी चीजों के प्रति लगाव का होना एक सहज वृत्ति है तो प्रश्न है कि हमें अपनों के लिए क्या और किस सीमा तक करना चाहिए, इस शर्त के साथ कि हम पर पक्षपाती होने का आरोप न लगे। भगवान बुद्ध यदि अपना सारा लगाव महल के भीतर ही लगाए रखते तो संसार को कुछ न दे पाते। भगवान कृष्ण भी यदि अपनी गोपियों से आगे न बढ़े होते तो द्वारकाधीश बनकर परवर्ती कर्तव्य नहीं पूरे कर पाते। इसी तरह आप भी अपनों के प्रति आवश्यकता से अधिक लगाव और उनके प्रति अपनी कमजोरी दिखाकर अपने को छोटा न बनाइए और दूसरों का अधिकार और प्राप्य न छीनिए। यदि आपको किसी अपने को किसी पद पर पहुंचवाना है तो उसके लिए पहले उसे पूरी तरह से आवश्यक योग्यताओं से भर दीजिए, वरना किसी अयोग्य अपने को

वो पद दिलाने से बहुत बड़ा अहित हो सकता है, जैसे गलत अध्यापक आगे की पीढ़ियां खराब कर सकता है, गलत इंजीनियर दर्जनों प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए रास्ता खोल सकता है, गलत डॉक्टर कितने ही मरीजों का बेड़ा गर्क कर सकता है, और गलत अफसर विकास की समूची दिशा को ही विनाशकारी मोड़ दे सकता है। कुल मिलाकर सही जगह पर सही पात्र न बैठ पाने के कारण ही प्रगति की जड़ें कमजोर हो पड़ती हैं और भ्रष्टाचार का दानव फलता फूलता है। जाहिर है कि अपनों के प्रति हमारी कमजोरी कई बार पक्षपात की जनक हो जाती है और औचित्य में बाधा पहुंचाकर भारी अक्षमताओं और अव्यवस्थाओं को प्रश्रय देती है। कितना सरल गणित है कि कमजोरी दिखाना बराबर है स्थिति बिगड़ने देना, और कमजोरी न दिखाना बराबर है सुधार करना। जब आप कमजोरी न दिखाकर किसी अपने को डांटते फटकारते या अन्य दंड देते हैं तो आपका लक्ष्य सुधार करना ही होता है, लेकिन जब आप कमजोर बनकर कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अयोग्यता और अनुशासनहीनता को सिर उठाने की छूट देते हैं। बीमारी को न रोकने से वो बढ़ती चली जाती है। जब कमजोरी न दिखाकर किसी गलत बात के आगे नहीं झुकते हैं तो आप अपने दृढ़ व्यक्तित्व के समाज की दीवारें बनाने में करने में प्रवृत्त होते जाते हैं। तब आप अपने ढुलमुल व्यक्तित्व से समाज में निम्न स्तर के अवसरवाद को बढ़ावा देते हैं। जब आप कमजोरी न दिखाकर किसी के प्रति पक्षपात करते हैं तो आप सामान्य श्रेणी के आदमियों से ऊपर उठकर छोटे हितों की तुलना में बड़े हितों के पोषक बन जाते हैं। लेकिन जब आप कमजोरी न दिखाकर किसी के प्रति पक्षपात करते हैं तो आप सामान्य श्रेणी के आदमियों से ऊपर उठकर छोटे हितों की तुलना में बड़े हितों के पोषक बन जाते हैं। लेकिन जब आप कमजोर बनकर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करने लगते हैं तब अंतरात्मा के सामने अपनी नजरों से गिरे हुए होते हैं। अंत में अपने से ये सवाल कीजिए कि मनुष्य का जन्म सबसे अच्छी योनि में किस लिए हुआ है, वो सारे प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों है, अपनी कमजोरी दिखाने के लिए या दूसरों की भी कमजोरियां दूर करने के लिए।

प्रकृति के बाद आकाशवाणी के साथ 9:15 पर आप सुनेंगे। रायपुर केंद्र से सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। सदाबहार नगमे का समय होगा सुबह 7:30। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई में परसराम यदु और माधव चंद्राकर के स्वर में गीत। सुबह 10:30 का समय होगा नए तरानों का। सुबह 11 बजे हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। रायपुर केंद्र से 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 12 बजे हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

शाम की सभा में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे। चित्रपट संगीत का आप आनंद लेंगे शाम 5:05 पर। किसानवाणी कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा मुनगा लगाएं लाभ पाएं, पशुओं को बरसाती रोग से कैसे बचाएं। क्रम होगा आज का प्रश्न, भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी भिंडी की उन्नत उत्पादन तकनीक विषय पर डॉक्टर प्रमिला जोगी, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय मुंगेली। भेंट करता होंगे महंगू भैया। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी भाव और सामायिक सुझाव का। रात 8 बजे आप आनंद लेंगे सुगम संगीत में नूर जहां के गीतों का। रात 8:15

मिनट पर हम हाजिर होंगे आपके साथ लेकर रजनीगंधा की महक। शाम 5:35, शाम 6:20 और शाम 7 आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का समय होगा 8:45, 9 अंग्रेजी में समाचार। रात 9:15 पर हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। 11 और 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम, जिसमें बेरा के गोठ का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हम सबों के जिम्मेदारी हवे। हम आपको एक बार फिर बता दें, आज सुबह 9:15 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: पूर्वान्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेल स्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ 190 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुडी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुडी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र वीएसएफ इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
0: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में

0: भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की विकट स्थिति निर्मित हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चेतावनी संदेश जारी कर जिले में अगले कुछ घंटों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है श्रोताओं कि हम अपनी ओर से भी विशेष सतर्कता और सावधानी बरतें। बारिश के समय जलभराव के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बाधित रहती है। ऐसे में हमें इन क्षेत्रों

में जाने से बचना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में पानी का बहाव अधिक हो, इन क्षेत्रों में हम ये प्रयास ना करें कि हम अपने वाहन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में संदेश जारी कर लोगों को सावधान भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जल भराव के क्षेत्रों के निवासियों और के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिले के विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया गया है की गई है जिसका नंबर है 07752471224। श्रोताओं, किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। श्रोताओं, इन दिनों अत्यधिक वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं और अत्यधिक वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी नाले रपटों और जल भराव वाले स्थानों के पास जाने से बचें। उफनते नदी नालों को पार करने का प्रयास न करें। पुल पुलिया रपटों पर पानी बहने की स्थिति में उसे पार करने का जोखिम किसी भी स्थिति में न लें। जर्जर और क्षतिग्रस्त मकानों में निवास न करें। यदि किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है अथवा किसी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति है तो तत्काल स्थानीय प्रशासन और राजस्व अमले को इसकी सूचना दें। श्रोताओं, सतर्कता और सावधानी से हम इस आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकेंगे।

बारिश में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है और एडवाइजरी जारी की गई है। श्रोताओं, भारी बारिश के मद्देनज़र मौसमी बीमारियों की रोकथाम और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। जिले में किसी भी विशेष आपातकालीन स्थिति अथवा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पर नागरिक जिला एवं विकास खंड स्तर की कॉम्बिट टीम से संपर्क कर सकते हैं। जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी से 877-066-4365 पर संपर्क किया जा सकता है। बिलासपुर शहर के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रक्षित जोगी का मोबाइल नंबर 900-972-7934 जारी किया गया है। इसी प्रकार बिल्हा विकास खंड के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीकेश गुप्ता

9007314 कोटा के डॉक्टर निखिलेश गुप्ता, 9770146540 मसूरी के डॉक्टर अनिल कुमार, 9827505957 और तखतपुर के डॉक्टर उमेश साहू, 9407728300 पर संपर्क किया जा सकता है। शहरी स्तर पर शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर टार्जन आदिले का मोबाइल नंबर 7241133198 और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट श्री पंकज सिंह का मोबाइल नंबर 7587038622 जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान बुखार, उल्टी दस्त अथवा अन्य मौसमी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और समय पर उपचार लें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से ये अपील की गई है कि वे किसी भी बारिश के मौसम में खान पान में विशेष सावधानी बरतें। सड़ी गली सब्जी, फल, मांस और इसके सेवन से बचें और इसके साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है जिससे आम लोगों को के सेहत पर दुष्प्रभाव पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदारों से भी खाद्य पदार्थों को ढककर बेचने के निर्देश दिए हैं। श्रोताओं, ये ज़रूरी है कि मौसम में हो रहे इस बदलाव के प्रति हम सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ भोजन और पेयजल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का संदेश दें।

0: जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, और अब आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह यातायात संबंधी दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विगत दो दिनों से जिले में भारी वर्षा हो रही है और एकाएक लगातार अत्यधिक वर्षा से जिले के अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। गली मोहल्ले से लेकर मुख्य सड़कों में भी कई स्थानों में पानी भरा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है, ऐसी स्थिति में किसी भी वाहन में हो पूरी सावधानी के साथ चलें। सामान्य पुल पुलिया में भी यदि पानी ऊपर से बह रहा हो तो थोड़ा भी रिस्क न ले दे। ऐसे में छोटे पुल पुलिया क्षतिग्रस्त होकर कमजोर हो जाते हैं। देख समझ कर ही पुल पार करें। सड़कों में भी पानी की अधिकता से नाली, नाले या गड्ढे का आभास नहीं हो पाता, इसलिए जहां भी पानी भरा हो प्रयास करें वहां वाहन के पहिए न उतारें। सड़कों में पानी भरा होने पर वाहनों की गति इस समय कम है। जल्दी निकलने के प्रयास में लोग रॉन्ग साइड भी जा रहे हैं। ऐसे में जाम की स्थिति बन रही है और गिरते पानी में भी यातायात के जवान आपको सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने प्रयासरत हैं। उनके संकेतों को तनिक भी नजरअंदाज न करें। साथ ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस के सहयोग के लिए जिले भर में लगभग 150 चेतना यातायात मितान बनाए गए हैं। ऐसे सभी यातायात मितानों से अनुरोध है, दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए सहयोग करें। मित्रों, शहरी सड़कों में सुरक्षित यातायात के लिए बड़े आकार के ऊंचे रोड डिवाइडर बनाए गए हैं ताकि दोनों ही दिशा में वाहन आसानी से आवागमन कर सके। आम लोग या मवेशी आदि एक सड़क से दूसरी सड़क पर ना आ सके। सभी वाहन अपनी निर्धारित गति में चलते रहें, किंतु मवेशी तो नहीं, समझदार प्राणी मनुष्य ही डिवाइडर में चढ़कर सड़क के दूसरे तरफ कूदकर सड़क पार कर रहे हैं। ये उनका सबसे खतरनाक कदम है। भूलकर भी ऐसा ना करें, स्वयं तो दुर्घटना के शिकार होंगे ही अन्य वाहन वाले, खासकर दो पहिया वाहन चालक भी इससे चोटिल हो सकते हैं। अतः हमेशा अपनी ही दिशा में जाकर चौक से दूसरी दिशा के लिए मुड़ें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट और बिलासपुर अभी आपने सुना, और श्रोताओं, आज एक विशेष दिन भी है जिसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई 1947 यह वह दिन है जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। 18 जुलाई 1947 को जब ब्रिटिश संसद ने

मंजूरी दी थी। लगभग 200 वर्षों तक भारत पर ब्रिटिश शासन रहा। इस दौरान स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन हुए, संघर्षों और बलिदानों का इतिहास लिखा गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया गया। साथ ही यह तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और दोनों देश अपने अपने शासन और संविधान निर्माण के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अधिनियम ने भारत की संविधान सभा को देश के लिए नया संविधान बनाने का अधिकार दिया। साथ ही ब्रिटिश संसद का भारत पर कानूनी नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को भी यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों। हालांकि स्वतंत्रता के साथ विभाजन की पीड़ा भी जुड़ी हुई थी। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने अनेक परिवारों को प्रभावित किया। यह अधिनियम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी ने स्वतंत्र भारत के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। 18 जुलाई 1947 का दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और सपनों की जीत थी। इसी ऐतिहासिक निर्णय के लगभग एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी देकर नए भारत की शुरुआत की घोषणा की।

और इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह से हमें दीजिए विदा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना के साथ।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म गुरु का ये गीत था, ए आर रहमान का संगीत, गुलजार के लिखे बोल और चिन्मयी मुर्तुजा खान की आवाज़ें।

कभी ना फिल्म का ये गीत आपने सुना, और लीजिए सुनिए अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म कभी, अलविदा नाते हैं से।

0: सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म कभी खुशी कभी गम।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर

0: प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भवः का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि

0: परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को किया जा रहा है।
2: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था, तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों

0: के साथ है फरहत नाज।
1: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन्स का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service between

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे शरीर के सभी अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो फिल्टर करने का भी काम करते हैं, और उन अंगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किडनी। और इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग किडनी से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। तो किडनी से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और इनके होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और किस तरह से इसका हम उपचार करवा सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कृष्णा सोमानी साहब को। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर सोमानी साहब, किडनी से संबंधित बहुत से पेशेंट देखे जाते हैं। कुछ लोगों को समस्याएं छोटे रूप में होती है, कुछ लोगों की समस्याएं बहुत बड़े रूप में होती है। तो इन समस्याओं को आप किस तरह से वर्गीकृत कर बताना चाहेंगे?
1: किडनी की समस्याएं हम अगर एक सिंपल वे में समझें तो किसी भी एज, किसी भी उम्र में और किसी भी को हो सकती है। ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं रहता कि ये में नहीं होती। दूसरी चीज़, दो तरह की बीमारियां रहती है। एक होती है जो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं, उनको एक्यूट किडनी डिजीजेज बोलते हैं या AKI बोलते हैं, और दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD। और ये जो CKD वाली बीमारी है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो किडनी की बीमारियों को अगर हम समझते हैं तो दो मुख्य रूप में विभाजित कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में वो मरीज के शरीर पे हमला करते हैं और उनका अगर सही समय पे इलाज हो जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD जो होते हैं वो धीरे धीरे धीरे किडनी को अफेक्ट करते हैं। पेशेंट्स को शुरुआती स्टेज में कोई सिम्टम्स भी नहीं आते और सही समय पे उनका अगर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उनको वहीं पे हम रोक सकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, जिससे मरीज को कंप्लीटली किडनी फेलियर और किडनी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े।
0: सर, अगर हम किडनी से जुड़ी साधारण समस्याओं की बात करें तो ये किस किस तरह की समस्या होती है जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती है?
1: तो एक्यूट किडनी डिजीजेस जो हैं उसमें सबसे हमको ये समझना रहता है कि आपके शरीर में कोई भी तरह की बीमारी हो और वो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में चली गई है, जैसे कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, या लूज मोशंस हो गए हैं, या फिर कोई किसी भी

0: तरह का फीवर है, टीबी है, और वो बहुत एक्सट्रीम पे चले गए, तो आपकी किडनीज बहुत नाजुक ऑर्गन है, वो आपको इफेक्ट करेगी। या फिर अगर किडनी में पथरी हो गई है और दोनों तरफ वो पथरियाँ यूरिन के रास्ते को रोक दी है, तो आपके किडनी पे असर होगा। किसी को कभी कहीं चोट लग जाती है, पॉलीट्रॉमा, मल्टीपल जगह रोड एक्सीडेंट्स, या कोई भी दूसरी बीमारी, कुछ आपने गलत दवाई खा ली है, या कभी सांप काट गया है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें किडनी तुरंत डैमेज, मतलब टॉक्सिन्स की वजह से डैमेज होता है, और वो टाइमली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। तो ये हम उसको हम एक्यूट किडनी डिजीजेस बोलते हैं।
1: ये तो हो गई उन समस्याओं की बात जो किसी और समस्या से उत्पन्न होती है। अब अगर हम केवल किडनी को होने वाले नुकसान या रोग या समस्या की बात करें, जिसके बारे में आपने बताया कि ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में एक गंभीर रूप ले लेती है, तो इनमें किस तरह की समस्याएं हैं?
0: तो इनमें प्राइमरीली जो भी मरीज, जैसा कि हम देखते हैं आज भारत में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है, हम हर तीसरे हर पांचवें व्यक्ति में शुगर या बीपी पकड़ते हैं, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जिनको भी रहता है उनमें किडनी प्रॉब्लम, सीकेडी होने का हाई चांस रहता है, अगर उनका शुगर और बीपी वेल कंट्रोल्ड नहीं रहता। शुगर बीपी वेल कंट्रोल्ड रहने पर भी कई मरीजों में शुरुआती किडनी प्रॉब्लम निकल आती है। दूसरे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको लंबे समय से दर्द की कुछ दवाइयाँ वो खा रहे हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, या कोई भी तरह का पेन किलर वो खा रहे हैं, और उस पेन किलर की वजह से किडनी में वो डैमेज कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा सिकलिंग बहुत कॉमन है, और जिनको सिकलिंग बहुत सीवियर फॉर्म में रहता है, सिकलिंग डिजीज रहती है, उनमें भी किडनी प्रॉब्लम डेवलप होने का हाई चांस हम देखते हैं। और फिर क्योंकि ओवरऑल इंडिया ही एक गर्म देश है, तो यहाँ पे पानी की कमी और पानी में कई तरह की नमक ज़्यादा होने की वजह से पथरी बहुत लोगों में दिखती है। अगर ये पथरी बार बार हो, रिकरेंट हो, और बहुत साइज में बड़ी हो, तो ये भी किडनी डैमेज करके सीकेडी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
1: डॉक्टर सोमानी, अगर हम दूसरी जो गंभीर समस्याओं की बात जो आप कह रहे हैं उसके बारे में, अगर इसके लक्षणों की बात करें, तो एक आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि किडनी की कोई समस्या धीरे धीरे घर कर रही है?
0: तो सबसे स्ट्रेंज बात यह है इस बीमारी में कि जो शुरुआती स्टेजेस होती है उसमें कोई ऑब्वियस लक्षण नहीं होते। आप शायद किसी फिजिशियन के पास जाओ तो वो उस चीज़ को पकड़ ले जिसको आप नॉर्मल समझते हैं, पर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, या कोई फैमिली में किडनी प्रॉब्लम आपके फैमिली हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली साल में एक बार आपके ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाइए। अगर आपको कुछ भी इश्यूज नहीं है तो भी 40 की उम्र के बाद आप डेफिनेटली साल में एक बार टेस्ट करवाइए, क्योंकि हम अगर जल्दी बीमारी को पकड़ते हैं तो इलाज भी बहुत अच्छे से हो पाता है। रही बात सिम्टम्स की, तो मैं पहले बताया कि शुरुआती में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहते, फिर भी पहला जो यूजुअल सिम्टम जो हम नहीं इग्नोर कर देते हैं वो होता है यूरिन में झाग आना। तो अगर आपके पेशाब में करते वक्त आप देख रहे हैं कि कमोड में बहुत ज़्यादा फेस, बहुत ज़्यादा फोम है, फोमी यूरिन है, झाग आ रहा है, तो उस समय आपको यूरिन की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो यूरिन से प्रोटीन लीकेज होने का एक सिम्टम रहता है। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड थकान रहना, कि हमारा खाना पीना सब अच्छा है, हम बाकी सब सही चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा थकान रहती है, या शरीर में बहुत खुजली हो रही है, या फिर भूख नहीं लग रही है, या पैरों में या चेहरे पे सूजन आ रही है, तो ये सारे लक्षण किडनी की बीमारी के हो सकते हैं। एक जो मैं सबसे ज़रूरी बात जो कई बार मिस हो जाती है, मैं को हाईलाइट करूँगा, कई अगर आप देखते हैं कि कोई भी आपके नियर बाय या आपके फैमिली में 40 से पहले जिसी किसी को ब्लड प्रेशर है, बीपी डिटेक्ट हुआ है, तो जो ये गलती कॉमनली लोग करते हैं कि बीपी हो गया, बीपी की दवाई खा रहे हैं, पर यूजुअली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आप और हम समझते हैं वो 40 के बाद होता है। अगर आपके घर में या किसी को भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है 40 से पहले, जिसको हम यंग हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली किडनी किडनी का जांच करवाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 में से 6

0: लोगों को किडनी का समस्या निकलता है और किडनी की समस्या की वजह से उनको ब्लड प्रेशर आता है।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम इन लक्षणों को नज़रअंदाज करने की बात करते हैं कि कई बार क्या होता है ना, कि जैसे आपने बताया कि पैरों में सूजन आ गई, पैरों में सूजन आने से सिर्फ सूजन दिखाई दे रही है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है, तो क्या इसे लोग नज़रअंदाज भी करते हैं?
0: देखो, पैरों में सूजन आना मतलब किडनी प्रॉब्लम होना ऐसा 100% नहीं है, पर पैरों की सूजन को नज़रअंदाज करना बिल्कुल रिस्की है, गलत है आपके लिए। अगर सूजन आती है तो उसका एक प्रॉपर चेकअप आपके नियरेस्ट फिजिशियन से करवाएं, और बहुत ही सिंपल और कम खर्च वाले जो टेस्ट होते हैं ब्लड एंड यूरिन के, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जस्ट एक कोई माइनर चीज है या कुछ मेजर बीमारी का इंडिकेशन दे रही है।
1: डॉक्टर सोमानी, आजकल तो बहुत सारे टेस्ट पैकेजेस में होते हैं और रूटीन टेस्ट भी लोग अपना करवाते हैं, जिसमें लीवर का और किडनी का भी टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट के जरिए। तो इस तरह के टेस्ट अगर करवाने से वो नॉर्मल आते हैं तो क्या हम निश्चिंत हो जाएं?
0: हाँ, अगर आपको और कोई मेजर इश्यूज नहीं है, आपने एक रूटीन चेक करवा लिया है, वो सब नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत हो सकते हैं। पर अगर आपको पहले कुछ बीमारी हुई है, कुछ मेजर और दूसरी दवाई चल रही है, या फिर पहले कभी पथरी हुई है, तो पथरी आपको यूरिन और ब्लड टेस्ट से तो नहीं समझेगा, उसके लिए आपको एक सोनोग्राफी भी ज़रूरत पड़ेगा। तो सब चीज़ खुद से ना करवा के आप किसी को कंसल्ट करिए।
1: डॉक्टर सोमानी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हेरिडिटिक होती हैं, वंशानुगत भी होती है, क्या किडनी की भी समस्या वंशानुगत या हेरिडिटिक हो सकती है?
0: तो इसमें मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा, एक सिस्ट की बीमारी होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांगली वंशानुगत रहती है, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में आती है। तो जिनमें भी आपके अगर पेरेंट्स को या आपके मामा साइड मतलब मैटरनल साइड या पैटरनल साइड में किसी को किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बीमारी है, तो आपको खुद की और आपके बच्चों की एक सोनोग्राफी स्क्रीनिंग के तौर पे करवानी चाहिए। उसमें सिस्ट अगर हम दिख जाते हैं, तो अब हमारे पास मेडिसिन्स आ गई हैं जिससे ये सिस्ट की साइज आगे ना बढ़े और ये कभी भी किडनी फेलियर में कन्वर्ट ना हो, तो उसका ट्रीटमेंट है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि अगर जो भी हमको पॉलीसिस्टिक किडनी का मरीज मिलता है, उनके फैमिली मेम्बर्स का हम स्क्रीनिंग ज़रूर करवाते हैं।
1: अब हम बात करते हैं किडनी से संबंधित समस्या के गंभीर होने की। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं, जैसे पेशाब में झाग आना, या पैरों में या चेहरे में सूजन आ जाना, और पेशाब का ठीक से नहीं होना, ये भी एक समस्या है। और इस समस्या की जांच करवाने जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि आपको किडनी से संबंधित समस्या दिखाई देती है, शुरू हो रही है, तो कई बार ये देखा गया है कि आगे चल के ये समस्या बढ़ जाती है और नौबत डायलिसिस तक की आ जाती है। तो क्या इस तरह की समस्या को डायलिसिस की स्थिति तक पहुंचने के लिए रोका जा सकता है?
0: तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको कौन सी बीमारी की वजह से सीकेडी हुआ है। अगर सीकेडी आपको हुआ है शुगर की वजह से, तो ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है। दवाइयों से आजकल अभी रिसेंटली कुछ दो तीन अच्छी दवाइयाँ आ गई है, जिससे इसका जो स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन है, जितना जल्दी बढ़ रहा है, उसको आप डेफिनेटली ब्रेक लगा सकते हो। पर ये पूरा नॉर्मल हो जाए असंभव है, शुगर संबंधित जो किडनी रोग है और उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उस केस में एक पॉइंट पे डायलिसिस लगता है। पर अगर हम दूसरी बीमारियाँ देखें सीकेडी के दूसरे कारण, जैसे कि अगर पेन किलर है या ब्लड प्रेशर है या कुछ और दूसरी, तो उनमें दवाइयों से उसको कंप्लीटली वहीं पे रोक सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या कारण से मरीज को सीकेडी डेवलप हुआ, और उस हिसाब से उसका इलाज होता है। इन एनी केस, अगर पेशेंट को सीकेडी है, तो अगर वो मेडिसिंस, डाइट, वैक्सीनेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानियां रखते हैं, तो उनका डायलिसिस डेफिनेटली 5 से 10 साल आगे खसक जाता है। अगर वो दवाइयां रेगुलरली ले रहे हैं, अगर वो डाइट का फॉलो कर रहे हैं, तो पेशेंट को काफी

0: हेल्प मिल सकती है।
1: डॉक्टर सोमानी, अगर हम अपने नियमित खान पान या रहन सहन की बात करें, या फिर शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उनकी अगर बात करें, तो क्या इनका भी हमारे किडनी की समस्या से कोई संबंध है?
0: डेफिनेटली बहुत बड़ा संबंध है। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, कसरत आपकी डेली रूटीन में है, तो ये सारी बीमारियां होने का रिस्क आपको कम हो जाएगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप मस्कुलर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा ये आपको नहीं होएगा। और अगर ये नहीं होगा तो आपके किडनी प्रॉब्लम होने का जो रिस्क है वो भी काफ़ी काफ़ी कम हो जाता है। इवन इफ आपको अगर शुरुआती किडनी प्रॉब्लम है और आपकी एक लाइफस्टाइल अच्छी है, डाइट करेक्ट ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम में भी काफ़ी फायदा होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बात जो कॉमन देखी गई है लोगों में कि जब भी उन्हें कोई दर्द होता है, चाहे सिर दर्द की बात करें, बदन दर्द की बात करें, या कभी पैरों में दर्द हो रहा है, या कभी कंधे में या हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो जाते हैं मेडिकल स्टोर और वहां से कहते हैं कि मुझे फलाना पेन किलर आप दे दीजिए, लेकर आते हैं, खाते हैं। क्या ये पेन किलर खाने की जो आदत है ये भी हमारे किडनी को प्रभावित करती है?
0: ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन कारण है। तो एक या दो टैबलेट खा लेने से तो कुछ होता नहीं है, पर अगर आप इसको रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और उसका कारण नहीं समझ रहे, जैसे आपको हेडेक हो रहा है हमेशा, आप अपना बीपी चेक करवाइए, आप अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए, कुछ ENT प्रॉब्लम है वो देखिए और उसका कारण समझ के उसका इलाज करिए। ये नहीं कि बस आप हेडेक हुआ और तुरंत आपने कोई पेन किलर खाया। वैसे ही कहीं पे भी दर्द है तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, या कुछ इंजरी हो रहा है, कुछ जोड़ों में घस गया है, कोई आर्थराइटिस है, आप उसका कारण समझिए, उसका स्पेसिफिक इलाज करवाइए, तो उससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। रादर देन गोली खा के सिर्फ आप 12 घंटे रिलीफ रहते हैं और आपका किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होता है।
1: डॉक्टर कृष्णा सोमानी, आज आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं किडनी से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में। इस पर विस्तार से आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। उसके पहले मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर मोड़ें और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: तो जब वी मेट का ये इश्क है,
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म जब वी मेट का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा सोमानी जी, और आप हमें किडनी की समस्या और समाधान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस गीत से पहले आपने बताया कि पेन किलर लेने की जो आदत है वो हमारे किडनी को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम कारण कोई भी हो, किडनी पर अगर उसका असर पड़ता है तो ये असर आगे चलकर गंभीर रूप भी लेता है, और अब हम उस गंभीर स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जब किसी व्यक्ति की किडनी की समस्या जो है ये डायलिसिस की नौबत तक पहुंच जाती है, तब उसके लिए क्या डायलिसिस ही एकमात्र उपाय होता है कि वो अपनी किडनी को अपने शरीर के मुताबिक रख सके, या फिर उसका कोई दूसरा विकल्प भी है?
1: तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जब आपकी किडनी मोर देन 90% काम नहीं कर रही, तो खून में गंदगी जमा हो रही है और सफाई नहीं हो रही, तो खून की नियमित रूप से सफाई होनी जरूरी है, नहीं तो वो दूसरे अंगों को प्रभावित करेगी। तो खून की नियमित सफाई आर्टिफिशियली हम मशीन द्वारा जब करते हैं तो उसी को डायलिसिस बोला जाता है। डायलिसिस कंप्लीटली पेनलेस होता है, पहली चीज़, उसमें दर्द नहीं होता, उसमें कोई बहुत मेजर तकलीफ नहीं होती पेशेंट्स को, ये एक लाइफ सेविंग चीज़ है। तो अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डायलिसिस के लिए एडवाइस किए हैं तो उससे बिल्कुल भी डरने, घबराने या नहीं करवाने जैसा नहीं सोचना है। उसके लिए बहुत ही पॉजिटिवली आपको एडमिट होके डायलिसिस शुरू करना चाहिए। ये तभी हम बोलते हैं जब मरीज का किडनी 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर देता है। कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए डायलिसिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उससे आप वापस बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, वापस आपको भूख लगने लगती है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, वापस चीज़ें आने लगती है। पर अगर आप बोलेंगे कि ये डायलिसिस आप अगले 20 साल करते रहेंगे,

0: तो ये बात सही नहीं है। कुछ समय के लिए डायलिसिस एक बहुत अच्छी थेरेपी है, पर ये जो किडनी, अगर दोनों किडनी फेल है, तो इसका जो परमानेंट सल्यूशन है, जिससे आपका डायलिसिस भी बंद हो जाए, आपकी डाइट पूरी नॉर्मल हो जाए, होता है किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी प्रत्यारोपण। इसमें एक शरीर में नई किडनी लगा के आपको ऑपरेशन के द्वारा नई किडनी लगाई जाती है, और वो आपकी खून की जो फिल्टरिंग, जो सफाई है, वो चालू हो जाती है। इसके ऑपरेशन के बाद कई तरह की दवाइयाँ देनी रहती है, जो आपको लाइफ लॉन्ग चलती है। दवाइयाँ बंद नहीं होती, पर आपका डायलिसिस बंद हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी नॉर्मल हो जाती है, और फिर आप काफ़ी फ्रीली और इंडिपेंडेंटली रह पाते हैं।
1: किडनी ट्रांसप्लांट का जो विकल्प आपने बताया है, तो ये किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, क्या अपने करीबी ही किसी व्यक्ति का लिया जा सकता है, किडनी ली जा सकती है, या कोई भी दे सकता है?
0: बेसिकली दो तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक तो लाइव रिलेटेड और एक कैडेवर। तो लाइव रिलेटेड की बात करें तो सिर्फ नियर बाय रिश्तेदार ही आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं, यही लीगल है इंडिया में, कोई भी नहीं दे सकता। और इसमें भी रिश्ते डिफाइंड है, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे और हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये पांच ही रिश्ते आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं।
1: और जो आपने दूसरा जो
0: जो
1: बताया,
0: कैडेवर रजिस्ट्रेशन होता है, अब कई बार ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता या घर में कोई प्रॉपर डोनर ही नहीं है, तो उस स्थिति में वो पेशेंट क्या करे? तो उस स्थिति में हम लोग ना स्टेट में एक वेटिंग लिस्ट बनाते हैं और मरीज का उस लिस्ट में नाम रजिस्टर कर देते हैं। अब जब भी आप देखते हैं कोई एक्सीडेंट केस होता है या फिर कोई फैमिली में डेथ होती है और उसके रिलेटिव्स चाहते हैं कि हमारे जो मरीज जो अब नहीं रहे उनकी ऑर्गन्स डोनेट करें, तो वो ऑर्गन्स फिर उस वेटिंग लिस्ट के जरिए एलोकेट होते हैं पेशेंट्स को, तो उसको कैडेवर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अगर घर में कोई डोनर नहीं है अवेलेबल, तो फिर हम मरीज को कैडेवर रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करवा देते हैं, वहाँ उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। तो जब कॉल आता है, जब उनका नंबर आता है और जब किडनी अवेलेबल रहती है, तो उस टाइम वो ऑपरेशन करके मरीज ठीक हो जाता है।
1: इस स्थिति में क्या केवल ब्रेन डेड व्यक्ति की ही किडनी ली जा सकती है, या सामान्य मौत होने वाले व्यक्ति की भी ली जा सकती है?
0: नहीं, कोई भी सामान्य मौत, एक्सीडेंटल डेथ, ब्रेन डेथ, ये किसी भी स्टेट में आप डोनेशन कर सकते हैं।
1: मृत व्यक्ति की किडनी क्या ली जा सकती है?
0: हाँ, पर उसका टाइम ड्यूरेशन है।
1: कितना?
0: जैसे डेथ हुई
1: हाँ,
0: तो विद इन 1 आवर आपको इन्फॉर्म करना है, और उसके कुछ समय में वो टीम आएगी, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ऑर्गन सिर्फ किडनी नहीं निकाली जाती, बाकी ऑर्गन्स भी वो निकाले जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, कॉर्निया हो
1: काम आ
0: गई,
1: जाते
0: वो
1: हैं।
0: सब काम आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ मरीज एलोकेटेड रहते हैं, वहाँ वहाँ उनको ग्रीन कॉरिडोर से उनको शिफ्ट ऑर्गन्स लिए जाते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: सोमानी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मृत व्यक्ति के शरीर के अंग भी किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं, अगर उस अंग को एक समय रहते हुए
0: हाँ, बताया
1: ट्रांसप्लांट
0: जाए।
1: किया जा सके, निकाला जा सके। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है और उसके अंग को वो दान देना चाहते हैं, तो तुरंत उन्हें क्या करना होगा?
0: तो तुरंत उन्हें नियरेस्ट जो नोडल एजेंसी रहती है, या फिर आप एम्स या डीकेएस या आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कैडेवर रजिस्टर्ड है,
1: जी
0: उनको इन्फॉर्म करना रहेगा। तो जब आप उनको इन्फॉर्म करोगे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आएगी, पेशेंट एम्बुलेंस से वो जो डेड बॉडी है उनको लेके जाएंगी, उनके ऑर्गन्स रिट्राइव करेंगे और फिर उसके बाद आपको सौंप देते हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, वो व्यक्ति डायलिसिस कराते हुए अपने जीवन को बिल्कुल सामान्य रूप से जी सकता है?
0: देखिए, अगर आपके पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही नहीं है, तो डायलिसिस करवाना है और वो हफ्ते में 3 बार करवाना है। डायलिसिस के साथ अगर आप प्रॉपर डाइट, दवाइयाँ, मेडिकेशन, वैक्सीन्स और रेगुलर विजिट टू योर नेफ्रोलॉजिस्ट आप अपने विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सामान्य जीवन वो जी सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाइट में एक्सक्लूडेड रहती है, एक डाइट प्लान थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, पर उसके अलावा अगर आप

0: हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे कई पेशेंट्स हैं जो खुद अपनी गाड़ी चला के आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, वापस घर जाते हैं। कई लोग मॉर्निंग सुबह पूरा ऑफिस वर्क रहता है और शाम को डायलिसिस करवाते हैं, घर जाते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: सोमानी, आज की तारीख में अगर हम आर्थिक स्थिति और डायलिसिस की बात करें तो सरकार की ओर से अब क्योंकि बहुत सारे आयुष्मान कार्ड की तरह जो सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्यगत सुविधाएं मिल रही हैं, बीमा की सुविधा मिल रही है, तो इसमें अब डायलिसिस कराने वालों को किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: डायलिसिस पूरी तरह से फ्री है। ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस फ्री होता है, आपका पैसा नहीं लगता। तो सबसे अच्छी बात है कि ये आपका एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनता। दवाइयाँ जो चलती हैं वो तो आपको चलेगी, पर जो डायलिसिस का खर्च है मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में, जहाँ आयुष्मान योजना लागू है, वहाँ पे डायलिसिस का कोई चार्ज नहीं लिया जाए।
1: डॉक्टर कृष्णा सोमानी जी, आज आपने किडनी से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप किडनी की समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर कृष्णा सोमानी से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है बातों बातों में, इसमें सुनिए कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण पर छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण विशेषज्ञ श्री विपिन दुबे से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस वर्ष मानसून में हुई कुछ देरी ने हम सभी को जल के महत्व का एहसास करा दिया है। प्रदेश में अनेक शहरी इलाकों में कॉलोनियों में टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ा, वहीं किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम भूमि से जल का जितना दोहन करते हैं उतना वापस जमीन के अंदर नहीं पहुंचाते। इसे ही ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को बर्बाद होने से बचाना और उसे वहीं संरक्षित करना है जहां बारिश होती है। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में अनेक अनुकरणीय पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की हाल ही में प्रसारित दो कड़ियों में कोरिया और बालोद जिले में इस दिशा में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। कोरिया जिले में आवा पानी झोंकी जैसे अभिनव मॉडल के माध्यम से किसानों ने अपने खेतों में रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढों का निर्माण कर वर्षा जल को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। वहीं बालोद जिले में कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब 3 लाख संरचनाएं बनाई गई हैं। इससे वर्षा जल को संरक्षित और एकत्रित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्रोताओं, कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने जल संरक्षण विशेषज्ञ श्री विपिन दुबे। जल संरक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से उल्लेखनीय योगदान देने के लिए डॉक्टर दुबे को भारत सरकार की ओर से वाटर हीरो अवार्ड और जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। विपिन जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।
1: विपिन जी, हमारा देश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर बारिश बड़ी तादाद में होती है, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में देखने में आता है कि वहाँ पर भूमिगत जल की कमी का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति क्यों बनती है?
2: अब भारत देश में यदि एवरेज हम एनुअल रेनफॉल लेते हैं तो भारत देश में 1100 mm की बारिश होती है
1: जी।
2: इस 1100 mm की बारिश पूरे भारत देश

0: के विभिन्न राज्यों को मिलाकर के आंकड़े निकाले गए हैं
1: जी,
0: उसके बावजूद भी हम जो है वर्षा जल को बचा नहीं पाते हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर होता है और अक्टूबर से आगे जून तक क्रमशः जो है भूजल स्तर जो है विभिन्न प्रदेशों में अधिकांश रूप से बहुत ही व्यापक रूप से नीचे चला जाता है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम बारिश के पानी को रोक नहीं पा रहे हैं। और अधिकांश लोग कहते हैं कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वाटर, लेकिन मैं कहता हूं कि वाटर इज रनिंग आउट ऑफ इंडिया।
1: जी,
0: तो पानी जो बह करके अपने देश से जो हमारा बाहर जा रहा है उस पानी को हमें रोकना है। तो उसे हम रोकेंगे कैसे, उसके हमें विभिन्न जो वैज्ञानिक जो तरीके हैं जो तकनीकी है वो हमें अपनाना होगा। सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ चेरापूंजी और मेसनरम का, जहाँ 11,000-12,000 mm की बारिश होती है और गर्मी के दिनों में वहाँ पे लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि वो जमीन से नीचे खोद करके पानी निकालने के लिए पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जबकि वहाँ का जो जियोलॉजी यदि देखा जाए मेसनरम का, तो वहाँ पे पोरस लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन एक अच्छा वाटर बियरिंग रॉक होता है जो अपने अंदर पानी को समाहित करने की उसकी बहुत अच्छी क्षमता होती है। वैसे ही हम राजस्थान की तरफ चले जाएं तो अलवर में सबसे कम पानी गिरता है, वहाँ भी वाटर बियरिंग रॉक बहुत अच्छी सैंड है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो एक जगह बहुत अधिक पानी गिर रहा है, एक जगह कम गिर रहा है और पूरे भारत में 1100 mm की बारिश हो रही है और हम प्यासे हैं। तो हमें पानी को रोकना होगा समुद्र में जाने से, इसके लिए व्यापक उपाय करने होंगे।
1: जी विपिन जी, जैसा भी हमने अपने श्रोताओं को बताया कि भारत सरकार कैच द रेन अभियान चला रही है, ये जो वर्षा जल संरक्षण है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे अभिप्राय क्या है? इनको आसान शब्दों में हम कैसे अपने श्रोताओं को बताएं कि ये होता क्या है?
0: रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम इस रूप में समझ सकते हैं, उसके दो रूप है, एक शहरी क्षेत्र का रूप होता है और दूसरा होता है ग्रामीण स्तर पे।
1: जी,
0: तो शहरी क्षेत्र में आपके छतों में जो बारिश का पानी गिरता है
1: जी,
0: उसको एक पीवीसी पाइप के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से हम अपने ट्यूबवेल के अंदर में या कोई ऐसी भूवैज्ञानिक संरचना बनाकर, जैसे कि सोक पीट रिचार्ज वेल या परकोलेशन टैंक बनाकर पानी को उसमें संग्रहित या भंडारण कर जमीन के नीचे भूजल में पिलाने का जो काम होता है उसको वर्षा जल संग्रहण एवं संचयन का काम हम कहते हैं। और ये बहुत ही आसान विधि है जो हम अपने छतों के माध्यम से बारिश को नीचे ट्यूबवेल के अंदर में संग्रहित कर सकते हैं। वैसे ग्रामीण स्तर में भी हम वर्षा जल संग्रहण का संचयन का काम परकोलेशन टैंक रिचार्ज वेल, आम भाषा में यदि बोला जाए तो सोक्ता, जो काफी हमारे देश में पुराने समय से ये पद्धति चली आ रही है और हम उसके माध्यम से जल संरक्षण का काम जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
1: विपिन जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं हमारे देश के जो कुछ महानगर हैं वहां पे यदि पानी की बात करें तो स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हम ये देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कई इलाकों में पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है और इस समस्या का निदान क्या है?
0: भूजल स्तर का गिरने का सबसे बड़ा कारण है वहां का शहरीकरण
1: जी,
0: वहां का कंक्रीटीकरण
1: जी,
0: और उचित जल प्रबंधन का ना होना
1: जी।
0: और इसका एक बहुत अहम कारण वो भी है कि बहुत ज्यादा भूजल का दोहन करना और भूजल के दोहन के अनुपात में रिचार्ज का कम होना
1: जी।
0: वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर प्रदेश की स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर शहरीकरण बहुतायत मात्रा में हो रहा है, कंक्रीटीकरण खूब हो रहा है और ट्यूबवेल खनन का काम बहुत ज्यादा हुआ है, उसके अनुपात में वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। जब हम ट्यूबवेल खनन का काम करते हैं वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है तो उसके ठीक अनुपात में ही हमको वर्षा जल का भंडारण जमीन के अंदर करने से हम भूजल की स्थिति जिसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं।
1: विपिन जी, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं या वर्षा जल संचयन संरक्षण की बात करते हैं तो एक आम आदमी को लगता है कि कोई एक बहुत बड़ी चीज है ये
0: जी।
1: तो एक आम आदमी जिसका छोटा घर होता है जो जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगा सकता
0: जी, जी।
1: बहुत ज्यादा व्यय नहीं कर सकता वो
0: जी, जी।
1: वो इसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है? कि हम ये भी देखते हैं कि जो जल है कई बार ऐसा भी होता है जैसे एसी का पानी है हम उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: तो ऐसे वो पानी का रीयूज करके उसका दोबारा इस्तेमाल करके भी वो पानी की बचत कैसे कर सकता है?
0: जी जी, पानी का दोबारा उपयोग बहुत ही मायने रखता है
1: जी।
0: क्योंकि इजराइल जैसा जो देश है
1: जी,
0: वो केवल रिसाइकल ऑफ वाटर में ही वो अरबों खरबों लीटर पानी को बचाकर उसको अपने खेतों में

0: अन्य कारणों के लिए उसको उपयोग में लाता है, वैसा हम यहाँ पर यदि उस सोच के हिसाब से काम करें तो हम काफी पानी बचा सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति यदि अपने घर में वाटर कंजर्वेशन का काम करना चाहती है तो वो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। पुराने समय में हम 3 फीट गोलाई का ऐसे 6 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें जो सोख्ता बोलते हैं वैसा सोख्ता खुद ही बना सकते हैं। ऐसा सोख्ता बना करके वाटर कंजर्वेशन का काम अपने घरों में कर सकते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति से यदि आप करना चाहें तो आपके छतों से जो पीवीसी की पाइप नीचे उतरती है उसमें एक वर्टिकल फिल्टर का इंस्टॉलेशन होता है और फिल्टर के बाजू में एक वॉल्व लगा रहता है जिससे पहला बारिश का पानी जो छत में गिरता है उसे हमें निकालना होता है। तो और जो फिल्टर से छन करके जो पानी जो है उसे हम सीधे ट्यूबवेल में हम उसको डाल करके भूजल के स्तर को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया नहीं है। वाटर कंजर्वेशन के इस काम के लिए 12 से 15 हजार रुपए में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और आपके बजट के अनुरूप वो काम आप करके पानी का भंडारण अपने ट्यूबवेल के अंदर में करके ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रिमूव कर सकते हैं।
1: एक बात और विपिन जी, ग्रामीण इलाकों की बात करें जहां पर कंक्रीटीकरण समस्या नहीं है,
0: जी
1: वहां
0: जी
1: की अधिकांश सतह मिट्टी की है,
0: जी
1: तो फिर भी हम देखते हैं कि कई ग्रामीण इलाकों में भी भूजल की स्तर जो है वो गिर रहा है और भूमिगत जल की समस्या का
0: जी
1: जो गिरता स्तर है
0: जी जी
1: उसकी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
0: जी
1: इसकी
0: जी
1: क्या वजह है?
0: बारिश का पानी जो जमीन में गिरता है, जैसे आम लोगों का सोचना है कि बारिश का पानी मिट्टी में गिरते ही वो जा करके नीचे जमा हो जाता है, उसका भंडारण हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी की प्रक्रिया को उतने जमीन के नीचे में जा करके जमा होने में कई साल लगते हैं और आज जो हम भूमिगत जल को हम जो दोहन कर रहे हैं ये कई वर्षों की जमा पूंजी है जिसको हमने बहुत ही बेतरतीब तरीके से ट्यूबवेल खनन कार्य करके उसको बहुत ही कम समय में उसके भंडारण को हमने खाली कर दिया है। ऐसे वर्षा जल को जाने में मिट्टी के माध्यम से बहुत अधिक समय लगता है और बहुतायत मात्रा में जमा होने के लिए उसको कई वर्षों लग जाता है। और दूसरा कारण ये है कि वहाँ के भूजल स्तर का नीचे जाना, क्योंकि वहाँ पर भूजल जो दोहन है ग्रामीण स्तर में सबसे ज़्यादा होता है। 85% भूजल का दोहन ग्रामीण स्तर में होता है। एक किसान जो अपने खेत के अंदर में ट्यूबवेल लगाता है वो घंटों उस ट्यूबवेल को चालू करके रख देता है जिससे बहुत ज़्यादा दोहन होता है और उस अनुपात में वहाँ पर रिचार्जिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो जो वाटर बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से वहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अब शहरी के क्षेत्र के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
1: देखिए, आपने कहा कि किसान ट्यूबवेल लगाते हैं लेकिन खेती के लिए सिंचाई भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे उनको फसल
0: जी
1: की पैदावार होगी। लेकिन हाँ, भरपाई भी ज़रूरी है। तो जो हमारे किसान भाई हैं वो कैसे उस जल को, वर्षा जल को वापस पहुंचा सकते हैं? उनके लिए क्या आसान उपाय हो सकता है?
0: मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत खराब है, आपके ट्यूबवेल में पानी बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो आप फसल चक्र परिवर्तन की ओर ध्यान दें। ऐसे फसल को आप अपने खेतों में लगाएं जिससे पानी ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसे आप वाटर बैलेंस आप कर सकते हैं। हर किसान को मालूम होता है कि उनके खेतों में पानी किस कोने में भरता है, कहाँ पर उसकी ढलान होती है, कहाँ पर उसका एकत्रीकरण होता है, तो उस जगह में वो एक बड़ा सा डबरी बना दे। वो डबरी बना देने का फायदा इतना ज़्यादा होता है कि जितना पानी आप अपने ट्यूबवेल के माध्यम से खींचकर आप फसल उगाने में खर्च करते हैं उससे लगभग आधे से ज़्यादा पानी जो है आप डबरी के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके उसकी भरपाई कर सकते हैं।
1: एक बात और है, जैसे सरकार भी कह रही है, जो सरकार ने अभी अभियान चलाया है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, तो इसमें सामुदायिक भागीदारी की बात हो रही है। अकेले सरकारी प्रयासों से
0: जी
1: इतनी
0: जी
1: बड़ी चुनौती से हम नहीं निपट सकते हैं, तो जल संरक्षण में जन भागीदारी कैसे हो सकती है?
0: जल संरक्षण में जन भागीदारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है।
1: जी
0: हम जो है किसानों के बीच में जाकर उनको प्रोत्साहित कर एक जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को जन भागीदारी में जोड़ करके विभिन्न प्रकार के जो वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर है उन गांवों में बनाकर बारिश के पानी को हम रोकने का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक लंबा हमको ट्रेंच बनाना है, मान लो 2 किलोमीटर का ट्रेंच बनाना है, उस
1: जी
0: 2 किलोमीटर के ट्रेंच में यदि किसानों की भागीदारी हो जाए तो उससे हम लाखों लीटर पानी उस ट्रेंच के माध्यम से या परकोलेशन पिट जैसे स्ट्रक्चर बनाकर या रिचार्ज वेल जैसे स्ट्रक्चर बनाकर या रिचार्ज पिट जैसे स्ट्रक्चर ग्रामीण स्तर में या शहरी क्षेत्र में भी जन भागीदारी के माध्यम से बनाकर हम अरबों खरबों लीटर पानी बचाने का काम कर सकते हैं।
1: अंत में हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं,

0: उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं, वो हमेशा आप ध्यान रखिए, और वो है 5R कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट कह सकते हैं। वो पहला आर है वो रिड्यूस योर वाटर कंजम्पशन, जितना पानी आप बचाने का प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए। दूसरा है रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, जितना भी आपके घर में से खराब पानी निकलता है, मुंह धोने का पानी हो गया या सब्जी आप धोते हैं उसका जो पानी हो गया, एसी का पानी हो गया, कूलर का पानी हो गया, आपके वॉशिंग मशीन का पानी हो गया, उन सब पानी को जो है हम कैसे उसका उपयोग अपने घर के अंदर में करें ताकि हम पोटेबल वाटर को बचा सकें। और तीसरा है रिसाइकल ऑफ वेस्ट वाटर, जितना भी वेस्ट वाटर है उसको हम अपने घर के अंदर में कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। और चौथा जो आर है वो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का आप हमेशा सोचिए, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन में अपना योगदान दीजिए, अपने घर में कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए और जन भागीदारी के तहत अपने क्षेत्र में ऐसा काम करके एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत भी कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पांचवा आर है वो रिस्पेक्ट फॉर वाटर, जब तक आप पानी का सम्मान नहीं करेंगे हम पानी बचाने में असफल हो जाएंगे। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ सब में जल को जो है पूजनीय माना है और उसको एक ईश्वरीय तुल्य माना गया है, तो जब हम जल को ईश्वरीय तुल्य मानते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसे पवित्र जल जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हो रही है मुफ्त में, उसे हम बचाने का योगदान कर अपने भारत को 2047 तक एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जल के क्षेत्र बनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: बातों बातों में, इसमें अभी आप सुन रहे थे कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण पर छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण विशेषज्ञ श्री विपिन दुबे से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र।
3: अभी आप सुन रहे थे रायपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम बातों बातों में। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब दिल्ली केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
5: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
4: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है। हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आप रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल

0: नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए, उसके लिए जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर, अच्छा। जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है।

0: टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं
1: जी
0: जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर
1: अच्छा,
0: जो पूरा पहन
1: बूट्स
0: लेते हैं तो
1: वगैरह
0: यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी
1: पहनकर।
0: किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते,
1: जी
0: क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा,
1: सही
0: बात
1: बात
0: तो
1: है।
0: एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉरपोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहां पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहां तक
1: सही
0: उसको
1: जगह तक
0: लेके जाए।
1: पहुंचाएं।
0: जी जी लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे, हमने क्या है कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलोबरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस से लाके,
1: अच्छा,
0: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट
0: यस
1: कर
0: यस
1: दिया है,
0: यस
1: तो
0: यस
1: ऑटोमेटिकली वो
0: बिल्कुल
1: अच्छे तरह
0: बिल्कुल
1: से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप
0: यस यस
1: उसे
0: यस
1: किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस
0: बिल्कुल
1: कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन
0: देखो
1: होता है?
0: लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब जाने की फिराक में रहते हैं, और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है।
1: जी
0: डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे, तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा हैं, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा जो अलग अलग टाइप के लोग मिले, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30, 40, 50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बताएं मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले,
1: वो
0: है ना,
1: कैसे?
0: तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है, तालाबों से, लोटस कहाँ से आता है, तालाबों से, मछली कहाँ से आती है, तालाबों से, और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई

0: 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पर खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: बहुत
1: हैं,
0: अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक यूएसपी है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आइलैंड बनाते हैं,
1: अच्छा,
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का वो ये है, क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था, इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ। नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है, वो तो आज भी तालाबों पर उतना ही डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल। आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आइलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर अब वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकती, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी 1 महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11th क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और MNC में जॉब करने
0: जबकि वाले। जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहां के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहां दरोगा थे और मैं वहां पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहां फिर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 2018 जॉब किया था, तो 2018 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के 1 महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था,
1: अच्छा,
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, 1-2 भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं

0: ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है। और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो। तो मैंने कहा
1: अच्छा
0: ठीक है कल छोड़ दो वहां। तो
1: तो पहले आपने
0: मैंने
1: पूरा वो भूमिका तैयार की,
0: हाँ,
1: उसके बाद
0: क्योंकि
1: बताया।
0: जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना। मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी
1: पूछना
0: साथ
1: होता है।
0: लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ये है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है। तो
1: ऑब्वियसली लगता है कि बेटा
0: हाँ
1: इंडिपेंडेंट हुआ,
0: बेटा जो
1: जॉब
0: है
1: कर रहा
0: वो
1: है तो।
0: हाँ छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे। और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ।
1: टाइप
0: तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कल आएगा ही आएगा। तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता
1: पिताजी
0: था और
1: तक ना
0: बोलता था हाँ कि तुम ले
1: पहुंचे।
0: जाओ अब इसको। तो बेचारे तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आता तुम्हारे लड़के का
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं मैं तो सुन नहीं पाया था। उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया। और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो। अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था और
1: अच्छा
0: बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे।
1: वाह,
0: तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे
1: यकीन
0: यकीन
1: आया।
0: आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो ये करते हो,
1: वही लोग
0: तो
1: अप्रिशिएट कर
0: मेरे
1: रहे थे।
0: पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया
1: हाँ
0: कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो ये मजाक उड़ाने वाला।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है। उनको मन ही मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: नहीं मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए। तो मैं इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में वो पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए। हाँ
1: अच्छा
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, 1 साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए। तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सैड की ठीक है भाई मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं मेरे साथ के करते हैं ना,
1: अच्छा
0: मैंने मछली पालन कराया। अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप 1 साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ स्कूल में जाता हूँ बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे। दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी आगे झोपड़ी, एक
1: सूरज
0: छोटा सा
1: निकल
0: पॉन्ड, सूरज
1: रहा
0: निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना। क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं हम,
1: है।
0: लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बना बनाई है ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: तो अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं?

0: हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है।
1: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं,
0: अच्छा
1: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है क्या। जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होके देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ आपने झील भी रिवाइव करी है तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
0: अच्छा
1: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
0: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करना
1: नहीं
0: है?
1: टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं
0: अच्छा
1: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप US में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गाँव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूँ अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूँ, तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं,
0: अच्छा तो इस तरह से फाइनेंशियल
1: है
0: हेल्प
1: ना।
0: भी मिल जाती
1: हाँ
0: है और आपकी
1: फाइनेंशियल हेल्प
0: टीम।
1: मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉरपोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गाँव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी ये कॉरपोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था,
0: जी
1: यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गाँव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉरपोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉरपोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉरपोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गाँव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो
0: कितने?
1: CSR के अंतर्गत जरूरी नहीं है सब मदद करते हैं, कुछ कॉरपोरेट हमारी मदद करते हैं, और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉरपोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग
0: जैसे
1: क्षेत्र।
0: मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
1: देखो शुरुआत तो घर से होती है, अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहां पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ कर
0: साफ कर
1: दिया।
0: लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए
1: हाँ
0: तो।
1: तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
0: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी
1: थैंक यू
0: बातें
1: सो
0: बताई
1: मच,
0: जल
1: थैंक यू सो
0: संरक्षण के
1: मच,
0: बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन

0: कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 9:40 हुए हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
3: फिल्म घर का ये गाना।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्ती।

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता।

रेल भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 9:55 हुए हैं और रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन कल विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। और राजधानी रायपुर में कारोबारी ने अपने परिवार को जहर देकर खुद भी आत्महत्या की। पुलिस को घर से 5 शव मिले। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कल विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा 136 बिंदुओं पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। इस प्रस्ताव पर सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 पर अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। चर्चा में पक्ष विपक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। वहीं मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बिलासपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। सरकंडा इलाके में तेज बहाव में बहने से एक बुजुर्ग महिला की मौत होने की खबर है। बिलासपुर शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं और घरों में भी पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी होने के कारण 5 मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 3 के रूट बदल दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित और जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएं। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में कल रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को कथित तौर पर भोजन में जहर देकर मार डाला और बाद में उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति पुरानी बैटरी की खरीदी बिक्री का कारोबार करता था। पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने कोल लेवी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश कर 22 जुलाई तक की रिमांड हासिल की है। एजेंसी ने कोर्ट को ये बताया कि कोल लेवी मामले में रामगोपाल अग्रवाल को 104 करोड़ रुपए मिले थे। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल को कोल लेवी मामले के बाद शराब घोटाला केस में भी गिरफ्तार किया है। खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के खेल पुरस्कारों, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, प्रेरणा निधि, नगद पुरस्कार और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला खेल कार्यालय, खेल संचालनालय और राज्य खेल संघों के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन कल विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत

0: हो गया। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। और राजधानी रायपुर में कारोबारी ने अपने परिवार को जहर देकर खुद भी आत्महत्या की। पुलिस को घर से 5 शव मिले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: समाचार अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 10 बजे हैं। और अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई। अमराई के इस क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहला गीत परसराम यदु और साथियों के स्वर में।

0: कार्यक्रम अमराई में अभी आपने सुने परसराम यदु, एलिस जॉन व साथियों के स्वर में गीत। गीतों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: कार्यक्रम अमराई आप सुन रहे हैं।

और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई का ये क्रम समाप्त होता है। इस क्रम में हमने आपको सुनवाया परसराम यदु, एलिस जॉन, माधव चंद्राकर, रामनारायण ध्रुव, शांति यादव व साथियों के स्वर में गीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

0: तेरा सुरूर फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ें।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

फिल्म टोटल सियापा के अली जफर के गाए इस गीत के साथ ही नए तराने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की याद का दिन और आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गाने भूपी जी की आवाज में।

हसन कमाल के बोल थे फिल्म का नाम था एतबार, आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थीं। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: गोविंदर सिंह की आवाज थी। फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: पर बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैटिनी शो में हमारे साथ एक बहुत जरूरी मेहमान हैं, शुभजीत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपकी जो टी शर्ट है उस पर लिखा है जल है तो कल है। अब चूंकि हम रेडियो में बैठे हैं तो मुझे एक दृश्य खींचना होगा ना कि लोगों को पता चले। और आप पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे

0: अब कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी, रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़े समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं,
1: बिल्कुल
0: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैं ये रियलाइज़ किया हूँ कि हर चीज़ पानी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि पानी नहीं था इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हर काम अच्छे से होता है, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए आप, खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पानी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियां किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
1: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
0: ये कब शुरू की थी बोलूँगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊँगा,
1: अच्छा
0: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया, एंड गिनते गिनते एक बार पहुँच गए कि 80,000 पेड़ लग गए
1: क्या बात
0: 5 सालों में।
1: है जी।
0: लेकिन 5 सालों में, 2010 से शुरू किया था, 2015 तक 80,000 पेड़, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि कोई
1: जी
0: बोले कि वाकई यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब गिनना
1: ओ
0: शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
1: जी।
0: चाहे किसान हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जैसे लोग, पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
1: वाह,
0: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स, एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए
1: जी
0: हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज फिर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यहीं है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
1: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया,
0: जी,
1: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या हैं इसकी?
0: उपलब्धियाँ तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ, जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है,
1: जी।
0: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs, एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है, टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो या पेड़ पौधे में देना हो या टॉयलेट धोना हो या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को

0: लेके मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया है, डिज़ाइन किया है,
1: जी
0: एंड थैंक यू उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे। एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता, और इस फ्री फॉर ऑल है
1: अच्छा
0: कि
1: अच्छा
0: हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए उसको। नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नहा रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था। एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी ज़रूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने, इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया कि ये
1: जी
0: देखिए, ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स, और उन्होंने चारों तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो। क्योंकि सोच यही है कि एक, अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में, मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए, मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूँगा कि 2 महीना चले, काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग उसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया, जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का।
1: अच्छा
0: यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ। एंड उसको इम्प्रोवाइज़ करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहाँ लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूँ कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल हो गया है हम सब के लिए, एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कांटेक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात।
0: जी
1: दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी पहला तो ये है, RWH इंडिया हेल्पलाइन जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग ज़मीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज़ कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं। ईमेल कीजिए हमें, waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप

0: आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्यों, हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है, कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास। न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में, क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं, यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि यही सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौका ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश यह है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में, हर शहर में, कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्लास 8th भी पढ़ा हो, क्लास 5th भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए, लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का ज़मीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेस हैं, देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए, एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे,
0: 7,400 लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
0: आप
1: या
0: बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर।
1: अच्छा,
0: मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहां फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
1: अच्छा, वो भी है।
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूँ लोगों को, हर चीज मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है,
1: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेकर जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग, कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस

0: प्रॉब्लम में किस किस किस आइडियाज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस में क्या फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस में फ़ायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योर सेल्फ।
1: यही तो जन भागीदारी है
0: बस जन भागीदारी का मतलब ही है DIY। ये आज
1: जी।
0: मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन
1: जी
0: भागीदारी मतलब DIY। तो
1: जी
0: हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हर चीज़। क्यों, जब मैं बोलता हूँ ना, आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, तो उनको DIY किट मिल जाता है।
1: जी
0: उससे उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, हमारे इंजीनियर्स का, लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं। एंड एक इंजीनियर के पास 1,000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और
1: जी
0: एक आपको खूबसूरत बात बोलूंगा, इस समय पर 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में, क्योंकि
1: अच्छा
0: ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे गुजराती बोलते हैं, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, सेवन सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग और जुड़े हमसे। एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूँ, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई है, वो मराठी में लोगों को समझाती है, तो एक अच्छा चल रहा है। एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
1: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं।
0: देखिए, एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूँ, इसका हिंदी वर्ड, एक एक कहावत है ऐसा कुछ, कि अगर आप समय पे चीज़ का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: है।
0: कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है, तो एक छोटा सा उपाय, जल तारा, एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं
1: समय रहते ये उपाय कर लेना
0: समय
1: चाहिए।
0: रहते ही।
1: जी
0: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते हैं, पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता, पूरा गांव डूब गया, क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
1: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे सामने ही बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं,
1: जी
0: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है, वो सीधा बह के नीचे वाला, जो सबसे जो लो लाइन एरिया है, जो वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
1: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा और
0: बस
1: बाढ़ की समस्या नहीं होगी।
0: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुंदर में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे, हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया, क्यों, क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया, 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200 300 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं, अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज़्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे। वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण,
1: वाष्पीकरण।
0: वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है, कि उस समय जो सिचुएशन होगा, हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
1: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है।
0: जी, इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे

0: में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण के
1: गर्मी बढ़
0: कारण
1: गई है
0: गर्मी बढ़ गई है। हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा,
1: जी,
0: अभी ट्वेंटी
1: डबल से ऊपर
0: थ्री
1: हो गया।
0: बिल्कुल यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत जरूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
1: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो
0: बिल्कुल
1: पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
0: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूं,
1: जरूर,
0: अपने हिस्से का पानी बचाइए, बस दूसरे
1: यस।
0: का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब
1: तो सब
0: काम।
1: अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले आएगी।
0: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत
1: जी जी
0: जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल,
0: लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्यूनिसिपलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सब का, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
1: हमें बचाना है। तो चलते
0: हमारा।
1: चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
0: बिल्कुल, 2 घंटे 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू।
1: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
0: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है,
1: जी
0: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट
1: जी
0: मैं थोड़ा सा गा दूं आपके
1: जरूर जरूर
0: सामने।
1: जरूर, स्वागत।
0: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
1: वाह वाह,
0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
1: क्या बात है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत,
0: अरे बाप रे
1: सुनते हैं ये
0: बाप,
1: गाना।

0: अभी आप विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 11:55 हुए हैं और अब प्रादेशिक समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के राज्य खेल अलंकरण

0: के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कल विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा 136 बिंदुओं पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। इस प्रस्ताव पर सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 पर अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। चर्चा में पक्ष विपक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बीच बिलासपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। बिलासपुर शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई और घरों में भी पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी होने के कारण 5 मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 3 के रूट बदल दिए गए हैं। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार जांजगीर चांपा जिले में बारिश के चलते कर्रा नाला का तटबंध टूट गया है, जिसके कारण बांध से लगातार पानी बह रहा है। 40 परिवारों के 125 लोगों को राहत शिविर में ले जाया गया है। वहीं कंजी नाला पुल के 3 फीट ऊपर पानी बहने से आवागमन बंद हो गया है। एम्स रायपुर में जल्द ही अत्याधुनिक एडवांस्ड बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी। इसकी जानकारी विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने दी। नई बर्न यूनिट शुरू होने से गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में कल रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को कथित तौर पर भोजन में जहर देकर मार डाला और बाद में उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति पुरानी बैटरी की खरीदी बिक्री का कारोबार करता था। पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के राज्य खेल अलंकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करेगा। 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। बस्तर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 13 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,35,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनावों में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 से अधिक मीडिया पेशेवर शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के राज्य खेल अलंकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 12 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: एयरोस्पेस ने बनाया है विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन

0: और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए। एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीब।

0: के बाद ये एक
1: और आ गया,
0: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने यादों की महफिल।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल।

आराधना फिल्म का गाना था और अब द ट्रेन फिल्म का गीत आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन। मोहम्मद रफी की आवाज।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां।

0: काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: सुनिए।

नमक राम फिल्म का गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है धड़कन, किशोर कुमार की आवाज,

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और उसके जरिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं और हमारी और आपकी होती हैं बातें और तय होता है कार्यक्रम का एक सफर। आज की इबारत या आज का टेक्स्ट ये है, कभी कभी किया है ऐसे कि बहुत सोचा, ये कहना है वो कहेंगे, पर जब कहने का मौका आया तो कुछ नहीं कहते बना, या ये लगा कि छोड़ो अब क्या कहना है। कभी प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत की, कुछ तो दिल ने कहा होगा। अपने दिल की बात सुनो, दिल कहता है कह दूं तो बोलो बोलो, नजाकत से कहूं तो चुप रहिए, नजाकत से कहूं तो चुप न रहिए, बोलिए दिल की बातें। तो भाई ये था आज का टेक्स्ट, या ये कहूं कि ये है आज का टेक्स्ट। और बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हमें मिले हैं और कई श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि आज के गाने कौन से हो सकते हैं, आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, ये एक श्रोता का कमेंट है, एक श्रोता लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले राजेश खन्ना को आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखती हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है, कुछ कहना चाहो पर बातें मन में रहकर मुंह से नहीं निकल पाती, शायद सुनकर किसी को दुख ना पहुंच जाए, कभी किसी के सम्मान को चोट ना लग जाए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने मन की उस लाचारी को नहीं भूल सकता जब सब कुछ सामने था पर फिर भी मुट्ठी से फिसल गया, वो एक पल की हिचक उम्र भर का सन्नाटा बन गई। आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि सबसे भारी बोझ उन शब्दों का होता है जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाते। बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं हमारे श्रोता। एक और श्रोता का ये कमेंट है, बहुत कुछ सोचा था कहने को पर लफ्जों ने जब मोड़ लिया, दिल की बात दिल में ही रह गई या हमने कहना छोड़ दिया। कभी लिखे थे जो खत पन्नों पर वो स्याही आज भी कुछ कहती है, नजाकत से सुनो दिल की धड़कनें जो अनकही बात तब भी बहती है। खामोशियों के इस मेले में अब खुद से ही कुछ सवाल कीजिए, जो दिल कहे वो सच बयां कर दीजिए, डरिए मत बस आज कुछ बोलिए। ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करना है तो चलिए, ये रहा आज का पहला गाना। और अमूमन हमारे इस कार्यक्रम में हम गानों से जुड़े सवाल करते हैं लेकिन आज क्यों ना बातें करें। हमें बताइए कि कब जिंदगी में ऐसा मौका आया जब कुछ कहना था और कहते नहीं बना, किस किस की जिंदगी में ऐसा मौका आया था। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, सुरीला सफर वाली पोस्ट पर लिख दीजिए ये बात। इस गाने के बाद आप सभी की बातें शामिल करते हैं, कैसे आप अपनी बात नहीं कह पाए या कैसे आपने संकोच छोड़ा और अपनी बात कह दी, दोनों ही बातें लिखी है।

वही पड़ोसन फिल्म का ये गाना एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया। और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बानो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती, पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जवाब भी आया करता था, और ये खत हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं, जिंदगी में हर रोज न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था, वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा, लेकिन कुछ मित्रों को जरूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे, कहा भी, पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी

नजरें संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। ये 50 साल पुराना वाकया है, ये एक श्रोता है उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है, शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूंगी वो कहूंगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को ये जरा क्लियर कीजिएगा, अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं, ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए, अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने?

जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला। आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था। बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे जमाने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहाँ बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है, या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद नहीं? दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं?

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: है और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सएप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखती हैं कि डाकिए का इंतजार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है, कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें इमोजी नहीं पसंद है फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोता

राव ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं? और दूसरी बात, क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है? ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है, जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं, आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घोप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं, 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भिज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी ओर इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है। भाई शॉर्टकट का जमाना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहाँ हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थी, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं। ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन ऐन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़ ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि

इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते, पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो, और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़ झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

सिलसिला ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

मानव सभ्यता का इतिहास भी एक लंबे और प्रेरणादायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने न दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों पे सच्चाई रहती है
0: तो सुनना ना भूलिए 21 और 22 जुलाई को शाम 4 बजे। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार दिल्ली से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और

0: एक तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: कंग्रेचुलेशंस इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
0: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

0: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले

0: सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
0: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है।

0: 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप विविध भारती के संग हैं, सदाबहार नगमे।

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुमन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर

0: 19,750 मुंबई 400091।
1: मुजाहिद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बानिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज़।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत, और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार, ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोली।

पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी, और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ही गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदूर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोता

लिखे, बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा को, लासी गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदुर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हसर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज़ में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता, वो आया कि नहीं?
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। बोलिए नानी, आपके टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई, फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फो नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, है?
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है।

0: मेरा मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है। और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है, उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता, आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: सब लोग आ गए।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी, ये बिरयानी है या खिचड़ी? वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन। अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुकुम देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा?
2: अरे, आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आज बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
2: जी हाँ, वो तो है।
4: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की पापा सूरी नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा शुरू, बस करिए है, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ,
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
3: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ये गुड़िया, तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
0: हाँ, तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ,
0: वहाँ रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा
3: रे?
2: अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो शाम को जब डॉगी फ्लाईओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा,
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
4: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
4: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
4: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आस पास

0: वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
1: इसी समय की तो बात है,
0: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
1: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
2: ओ मम्मा, बुरे की बात बताइए ना।
1: हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
3: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
1: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
3: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
1: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
3: हाँ।
1: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
0: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
1: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारें, बचाएं, और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
0: हाँ।
1: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
0: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ।
3: क्या, घर लाने का?
0: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
1: हाँ,
0: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है। क्या है बेटा, क्या हो गया?
2: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए। तो
0: अरे क्या है बताओ।
2: पापा,
0: तो
2: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
0: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
2: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
0: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई।
2: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
0: इस समय लॉकडाउन में,
2: प्लीज पापा।
0: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
2: अरे पापा
1: कह रहे हैं,
2: कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
0: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
1: हाँ बिल्कुल देती हूँ मैं। ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए, और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
0: हाँ।
1: और लेकिन रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है। ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
0: अरे हाँ लगा लिया है।
1: सैनिटाइजर रखिए भाई।
0: अरे रखा है भाई।
2: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
1: तुम वहाँ क्या करोगे?
0: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
1: कमाल है आप तो।
0: तुम डरोगी तो नहीं ना?
2: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
0: हाँ चल चल चल,
1: डरोगी नहीं, ये क्या है
2: मम्मा, प्लीज।
0: चलो लिफ्ट बुलाओ, और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
2: हाँ हाँ पापा।

0: दो, कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
1: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
2: ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना।
0: दो, कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अम्मा
3: ये
2: लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
3: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
2: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए।
3: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
2: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
3: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
2: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
4: हाँ मम्मा,
2: तुम लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं।
4: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
2: क्यों बोला?
4: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
2: हवा?
4: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
2: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
4: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिख ही जाएंगे, आप बस वेट करिए।
2: अच्छा
3: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
2: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
3: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
2: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
3: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
2: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
3: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
2: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
3: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
2: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
3: हाँ।
2: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
3: हाँ हाँ देख देख,
2: ठीक है।
3: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
2: उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
3: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
2: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
4: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
2: हाँ,
4: हम जो कटोरा लाए थे ना, हाँ, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
3: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
2: हाँ, हाँ, पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
3: अरे डर रहा होगा ना शायद।
4: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
2: हाँ, पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
5: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, तुम लोग आसमान में टंगे हो।
4: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
3: बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे

0: कैदी है, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ
1: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
2: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
1: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
2: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
1: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
2: जी।
1: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
2: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
1: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
2: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
0: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
2: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं? हा?
3: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग, यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
2: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
2: अच्छा
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
2: अच्छा
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
2: अच्छा
3: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
2: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
2: क्या
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
2: अच्छा
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
2: हैं? हाँ हाँ हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
0: हुआ?
2: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
0: अरे
2: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
0: कोई बात नहीं कोई बात।
2: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
1: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ?
2: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
1: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा, जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ न सरकार, न अमीर न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
2: ये कौन लोग हैं?
1: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
2: आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जाते हुए।
1: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत, जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर।

0: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या?
0: इनका डर भूखो मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तैल गया हूं, अंदर तक तैल गया हूं।
2: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
3: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
0: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
3: हाँ हाँ
2: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
3: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
2: अरे
3: मर
2: नहीं
3: जाएगा।
2: दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
3: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
2: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
3: हाँ,
2: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है, ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
3: हाँ।
2: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
1: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
0: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
1: बिल्कुल।
0: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
1: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। नहीं, ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी।
1: बस बस बस, शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, चलो पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
2: क्या मम्मी पापा आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
4: गुड़िया,
2: अरे आप जाग रही हैं?
4: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
2: इज इट? क्या बात है,
4: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
2: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह, मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
4: बिल्कुल खुश।
2: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
4: हाँ बेटा, जरूर आएगी।
2: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से, इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके, गुड नाइट नानी, बाय बाय।
0: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
2: हाँ।
0: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
2: क्या बताया पापा?
0: दूध लाया।
2: हाँ?
0: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन।

0: टाउन में।
1: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
0: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
1: क्या बात है।
0: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
1: इज इट
0: बंगाली संदेश।
1: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
0: तो मीठे मीठे संदेश खाओ। और हाँ, अपनी मम्मी को भी खिला देना। हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
1: यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और थे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी, निर्देशक अमरकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती है तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे, और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है।
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति

0: देख, तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी ये इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को।
1: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों
0: जी
1: की, और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफबीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रहे ये फिल्में बनाने के?
0: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे। और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी,
1: जी
0: उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी,
1: जी
0: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना
1: नहीं,
0: चाहता है। और
1: हाँ
0: जो अमीर हैं वो अपनी क्लास कॉन्शियस हैं,
1: हाँ
0: इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में
1: जी
0: जाना चाहता है ये, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते। पैसा है, लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं,
1: सबसे बड़ा
0: सबसे
1: संदेश।
0: बड़ा। जी
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था।
0: जी
1: तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी ये फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म एनएफडीसी की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब ओटीटी पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: जन
1: पहुंची
0: जन
1: है।
0: तक पहुंची है ओटीटी की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे, और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है,
1: जी
0: करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी
0: मार्केटिंग
1: है
0: के
1: आप
0: लिए।
1: तक
0: जी
1: पहुंचने के
0: जी
1: लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है, तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना। बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा इंडियन में, अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: कोई
0: लेकिन
1: लाउड सिनेमा नहीं रहा
0: बिल्कुल
1: है इनका,
0: नहीं।
1: ना
0: और
1: इनमें
0: आप और हमारे इर्द गिर्द
1: कहानियां
0: की
1: ताने बाने।
0: कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है वो है, हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए, तो आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, फिर बात
0: जरूर
1: को आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे।
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही
0: जी
1: सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने,

0: तब से लेके विक्रमादित्य तक। तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे, एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को
1: जी
0: कहते हैं वामा।
1: जी जी
0: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थीं उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपामुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
1: जी तो कहाँ तक पहुंचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
0: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
1: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
0: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ
1: जी
0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो
1: जी
0: पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जी जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को
0: जी
1: जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुँच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियाँ हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं
1: नहीं
0: हूं,
1: हूं।
0: मैं उसके विरोध में नहीं हूं,
1: जी जी
0: क्योंकि संसार दोनों से चलता
1: जी
0: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी,

0: आपकी लेखिकाएं भी श्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीश

0: ऐसा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
1: बिल्कुल
0: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिप्रेक्ष्य में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए।
1: जी
0: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
0: जी,
1: है,
0: दोनों के लिए
1: जैसे ही
0: गलत
1: लगती
0: है। तो
1: है।
0: स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए,

0: गलत है।
1: ठीक
0: तो
1: है,
0: स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए,
1: जी
0: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
1: फ्री
0: ये
1: हो,
0: होना
1: वहां
0: चाहिए।
1: उसे स्वतंत्रता
0: जी
1: मिलनी चाहिए,
0: जी
1: अपने निर्णय को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके
0: जी
1: से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आड़े
0: देखिए,
1: आता है?
0: समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है। अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है, या ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके, और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है, ये तो पुरी साहब करेंगे। पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो, या हीरोइन मानता है। आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने ऑफ
0: शुरुआती
1: बीट,
0: बहुत सारी
1: जी जी
0: फिल्में
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब की
1: जंपिंग
0: फिल्मों में,
1: जैक,

0: नाम से जाने जाते हाँ, थे।
1: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
0: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
1: मधुबाला।
0: मधुबाला। उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था। और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
1: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
0: जी जी
1: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक
0: जैसे
1: हो जाती है।
0: अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है। मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी।
1: बहुत सुंदर
0: जी
1: आंखें बोलती थी उनके,
0: जी
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है
0: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत
1: है
0: अच्छी,
1: हाँ। जी, बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी हाँ। और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है। चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं।
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार
0: जी,
1: हैं, एक अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में। बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी
0: गुजरी
1: है
0: अब
1: अब तलक।
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड, तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले

0: मैं जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
1: जी
0: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
1: जी
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं वो, उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई,
1: जी
0: भुखमरी आ गई है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
0: जी
1: किताब रही ये
0: जी
1: यूं गुजरी अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हमने
0: साहित्य
1: आपको
0: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में लिया है।
1: शामिल किया,
0: जी
1: और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी। एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी

0: चीजें जब आपने की होती है, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है। इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद
0: जी
1: को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस
0: जी
1: कार्यक्रम का।
0: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा
1: दिल के सिवा
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़ केसर छतौली इंजानी बरपटिया पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये मकनपुर नवाडीह पोड़िपा पेंडारी सिंघरा भरदा गौरा मदननगर गणेशपुर टुकुडाण सिलफिली कनक नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया महावीरगंज लुर्गी टकिया शिवपुर सिलाजू उचेरवा आनंदपुर धंधापुर उधवा कटरा कुंदीकला रेवतपुर सिधमा बदौली जवा खाण गोपालपुर मुरका अतौरी ठरकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये असकला दोरना जरहाडी लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार महेशपुर जगन्नाथपुर बांसाझाल आमापानी कुड़केल घोघरा मानपुर बरिमा कंडराजा कुदारीडी डांड केसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी दुलदुला पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी लोटा पानी बोडो कछार साजा पानी गट्टी

0: बुढ़ा करडेगा खड़ा माचा राजा आमा महेशपुर घंता डांड परसा डांड पेटा सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल धरमजयगढ़ बोरो बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 107 है। ये महाराजगंज बंगरसूता कूड़ेकेला बोजिया सिंघीछा बनहर लोटान कंचीरा पोटिया तेंदुमार सीलिंग पारा सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर केरा कछार पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल की केंदई एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई कोदवारी भोड़ूपानी कठमोरगा बांधापारा लालडी झुंडकीडी जुनवानी कुकरी कादर बनिया चोटिया लालपुर सेमरहा बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 40 है। ये बंगूरसिया जुनवानी भैंसगढ़ी कंटाझरिया नागदरहा पंडरीपानी बटुरा कछार अमलीडी सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल की कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये ताल दादर फुरफुंदी झाल पानी अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार ताराझर कुरवा पानी खोला पारा छिंदौला लूठा पारा फरसरा बोडापाला जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड़।

अभी प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज के चित्रपट संगीत में हम कुछ गीत सुनेंगे उस सुपरस्टार की जिनको देखकर लड़के हेयर स्टाइल कॉपी करते थे, लड़कियां चिट्ठियां लिखती थी। तो लीजिए शुरू करते हैं उनके गीतों का सफर।

श्रोताओं, ये गीत था अंदाज फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल हसरत जयपुरी के थे और संगीत शंकर जयकिशन का। और आइए अगला गीत सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की ही आवाज में। गीत के बोल मजरू के हैं और संगीत आरडी बर्मन का।

चित्रपट संगीत में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं अनुरोध फिल्म से राजेश खन्ना पर फिल्माया ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से, और आइए सुनते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आन मिलो सजना। आइए इस फिल्म से सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आन मिलो सजना। अभी आपने इस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम देख रहे हैं कि आज अभिनेता राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पर आप सब ने उनकी फिल्मों के गीत सुनना चाहा है, तो संगीत के सफर को शुरू करते हैं इस मधुर गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म द ट्रेन से। मोहम्मद रफी की आवाज है और गीत आनंद बख्शी का है, और इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, और फरमाइश की है इस गीत को सुनने के लिए भूचो कैचिया भटिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन एकम दमन और अभिजोत, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, मोहाली चंडीगढ़ से हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम और जेबा अजीम, मंजू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित ध्वनि गवाणकर, परी मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रणीता सिद्धांत प्रिंस एकांश गवाणकर, नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नम्हानकर, निर्मला विशाल नम्हानकर, ग्राम उचभट्टी से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या गोस्वामी, गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, भाटापारा से हैं विष्णु साहू, पूरव वीरा, हर्ष कुमकुम, योगेश्वरी साहू, रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दरियापुर बावली से हैं गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येले, गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, सोंगा मगर लोट से हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार पार्थ, हेयांश चंदन, पलारी से हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम, कृष्ण देवांगन, धनोरी तेलीवारा से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयहान, कोयलारी कवर्धा से हैं कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुणेन्द्र, साहिल चंद्राकर, खंडवा से हैं अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं द ट्रेन फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना द ट्रेन फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा से किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल इंदिवर के हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनना चाहा है लोरमी चचेरी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम ने। चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार। पाखुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बिलाईगढ़ से हैं केकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन। हांसी से हैं राजू मिगलानी, बब्बू, डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। भिलाई से हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। बीकानेर से हैं नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन, प्रमोद दमाणी। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, ममता अरोड़ा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, ऋतिक सेन, रितेश सेन, कंचन सेन।

और माही सेन दिल्ली से हैं, सुमित्रा देवी, सोनिया देवी और आयशा रानी दिल्ली से हैं, दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब राजकोट से हैं, जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, शाहजी बोखड़े बोड़खे, नंदा हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म दाद से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। गीत के बोल साहिर के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मुस्कान, योगेश मालाकार की। पलारी से सुनना चाहा है प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा ने। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं।

शुकामारे, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, यवतमाल से हैं पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, श्रव्या राम टेके, वाशिम महाराष्ट्र से हैं विठ्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायूर मायरा सुरोशे, महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और महेश राम टेके, तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, गुमला झारखंड से हैं नजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुप्ता अंजू, भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, बुल्ढाणा वनशिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शुभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका निष्का, तन्मय गजभिये, दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, राजा चैतन्य मस्कीन, नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, बागबहरा भदरसी से हैं पन्ना लाल सेन और खुशबू तारा कौशल सेन, राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, ओंकारेश्वर से हैं सपना, अंबिका, नीता, चिंकी, मिंकी, पिंकी सैनी, देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू, आकाश, कमलेश, मुरली छत्री। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दाग से किशोर कुमार का गाया ये गीत।

श्रोताओं एक सूचना है, आईटीआई में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन 17 जुलाई से 24 जुलाई तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फीटर एवं इलेक्ट्रिशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17 जुलाई 26 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cgitiadmission.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्थान से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में एक गीत है। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने और इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। उच्च ग्राम उच्च भट्टी से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या गोस्वामी। पलारी से हैं नितेश कुमार, लखनलाल, सावित्रीबाई, ईशान, तनुजा देवांगन। आमा खोडरा रेंगाखार से हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्षप्रिया गीत सरगम नेताम। पीपर लोड सरगांव जिला मुंगेली से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, दिवांश वर्मा। भिलाईगढ़ से हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सुहान, सरफराज, फरदीन, अरजान और अवान अब्बासी। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश। दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और निशु दीदी। नगर गोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी। लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। पुतकी कला कवर्धा से हैं राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे। रायगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई, यामिनी और उमा तिवारी। हररपुर मटकली जिला बरेली से हैं शाहरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी और डीजे प्रधान। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल सपकाल। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से लता।

श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग लेकर हम आएंगे शाम 6:20 पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद 6:20 पर और 7 बजे आप सुनेंगे ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम के शेष भाग। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें बेरा के गोठ में चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण हम सबों की जिम्मेदारी हवाए। 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज के बात में चर्चा का विषय है मुनगा लगाए लाभ पाएं, पशुओं को बरसाती रोग से कैसे बचाएं। भेंट वार्ता सुनिए भिंडी की उन्नत उत्पादन तकनीक विषय पर विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय मुंगेली की डॉक्टर प्रमिला जोगी की महंगू भैया से बातचीत। साथ होगा गीत संगीत और मौसम मंडी की जानकारी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में नूरजहां के गायक गीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम आप सुनेंगे जो राजेश खन्ना पर आधारित होगा। रात्रि 9:15 पर विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

कल प्रातः हमारा प्रसारण आरंभ होगा 5:51 पर। प्रातः 6:05 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर खेती की बात में राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर सामयिक सुझाव दिए जाएंगे। रामचरित मानस गान का प्रसारण का समय होगा 6:35। 6:45 पर चिंतन का विषय होगा असंभव और संभव। वाचन स्वर होगा संज्ञा टंडन का। 7:05 पर आसवा का प्रसारण किया जाएगा और 7:30 पर प्रातःकाल प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में आप सुनेंगे त्वचा रोग विशेष रोग पर चर्चा। 7:40 पर सदाबहार नगमों का आनंद आप लेंगे और 8:30 पर फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा।

माटी के स्वर। सुबह 10 बजे आओ बच्चों कार्यक्रम आप सुनेंगे। सामयिक चर्चा होगी गुल्लक से बैंक तक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी रतनपुर के बच्चों की प्रस्तुति आप सुनेंगे। कल रात 9:30 से 10 बजे तक दिल्ली से परिचर्चा रिले की जाएगी संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर। 6:30 पर कानून की बात, ये कार्यक्रम रायपुर से रिले किया जाएगा। बीएनएस नए कानून के संबंध में जानकारी देंगी श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़, जिला रायगढ़। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम रायपुर से रिले करेंगे।

जुलाई ले शुरू हुआ थे, 13 अगस्त तक चलैया ये सत्र ले पहली सरकार ह काली सर्वदलीय बैठका बुलाए हे। बैठका म सरकार सब्बो राजनीतिक दल मन ले संसद के दोनों सदन के कार्यवाही सुचारू ढंग ले चलाए बर सहयोग के अपील करही। सत्र के दौरान कई ठन महत्वपूर्ण विधेयक मन ऊपर चर्चा और उनला पारित करे जाए की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन काली राज्य सरकार के विरुद्ध विपक्ष डहार ले लाए गए 136 बिंदु मनु पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत ले अस्वीकृत हो गए। एकर पहली अविश्वास प्रस्ताव ऊपर चर्चा के जवाब देवत हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहिन है कि ये प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध न है बल्कि प्रदेश के 3 करोड़ जनता के अविश्वास और जनादेश के विरुद्ध हरय। उमन कहिन कि पाछू 2.5 बच्छर में राज्य सरकार ह जनता ले गए वादा ला पूरा करे के काम करे है। उमन कहिन कि सरकार की उपलब्धि स्वयं उखर कार्यशैली और जनविश्वास के प्रमाण हरय। बता दन कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में 14 घंटा 26 मिनट तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखा नोकझोंक होवत रहीस। हंगामा के सेती एक घाव कार्यवाही स्थगित घलो करेल पड़ीस। आखिर मा रतिया करीब 2:36 मा अविश्वास प्रस्ताव ला अस्वीकृत कर देगीस। चर्चा मा पक्ष विपक्ष के 18 जन सदस्य मन भाग लीन। एकर बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सदन के कार्यवाही ला अनिश्चित काल बर स्थगित करे के घोषणा करीन। उमन कहिन कि दिसंबर के आखिरी हफ्ता मा शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ह राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करे और एकर प्रारूप के मसौदा तैयार करे बर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करे हैं। समिति के अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करही। समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और MK राउत के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह ला सदस्य के रूप में शामिल करे गए है। ये समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करे के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति के अध्ययन करही। समिति समान नागरिक संहिता के प्रारूप तैयार कर राज्य शासन ला प्रस्तुत करही। राज्यपाल रमन डेका हा आज रायपुर में आयोजित PSY राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में प्रदेश के अलग अलग जिला के मेधावी विद्यार्थी और उत्कृष्ट जिला शिक्षा अधिकारी मल्ला सम्मानित करीन। ये मौका में राज्यपाल कहिन है कि आज इंटरनेट और AI के युग में सुविधा बढ़े है, फिर विद्यार्थी मल्ला अपन मौलिक सोच और अध्ययन की आदत ला बनाए रखना चाहिए। उमर विद्यार्थी मल्ले कोनो भी प्रकार के लत ले दुरिया रहे के आह्वान करत हुए कहिन कि डिजिटल एडिक्शन घलो आने नशा मनकस हानिकारक है। श्री डेका हा कहिन कि मोबाइल के उपयोग केवल जरूरी अध्ययन और उपयोगी काम तक सीमित होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में पहलैया अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 के आयोजन करीन। हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनाव में मीडिया की भूमिका विषय ऊपर आयोजित ये सम्मेलन में देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ले 380 ले ज्यादा मीडिया

0: तेवर शामिल हुईन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहिन कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग के निर्देश मन के अनुरूप पूरा पारदर्शिता के संग कराए जाते। उमन कहिन कि 95 करोड़ मतदाता वाला मतदाता सूची एक जीवंत दस्तावेज हरय। सम्मेलन में चुनावी प्रक्रिया, तकनीक के भूमिका और मीडिया के जिम्मेदारी मन ऊपर घलो विस्तार ले जानकारी देगीस। एमा छत्तीसगढ़ के आने आने मीडिया संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मन घलो भाग लीन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सरकार हा पेंशनर मन ला बड़का राहत देवत हुए महंगाई भत्ता बर दोनों राज्य मन के बीच आपसी सहमति के अनिवार्यता ला खत्म कर दे है। हालांकि केंद्र सरकार डहल ले तय दर ले ज्यादा महंगाई भत्ता राज्य नहीं दे सका। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है बतायन कि ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ले सहमति प्राप्त कर ले गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाबू बाते समाचार कोती। मौसम विभाग अवैया 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ जगह में भारी ले अति भारी वर्षा हुए के चेतावनी दे है। संगे संग कुछ एक जगह में गाज गिरे के संभावना जताये है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बतायन कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में मध्यम ले तेज वर्षा हुए के ऑरेंज अलर्ट जारी करे है। यही बीच बिलासपुर में भारी वर्षा के सेती बाढ़ जैसे हालात बने गए है। नेशनल हाईवे 49 में कई जगह में पानी भरे हुए है जेखर ले आवागमन प्रभावित हुआ थे। उन्हें रेलवे ट्रैक में पानी भरे के सेती 5 मेमू ट्रेन रद्द कर दे गए है जबकि 3 ट्रेन मन के रूट बदल दे गए है। उन्हें बलौदा बाजार भाटापारा जिला में 24 घंटा ले होवत लगातार तेज वर्षा के सेती महानदी और शिवनाथ नदी समेत कई ठन छोटे बड़े नदी नाला मन उफान में है। जिला कलेक्टर हा संभावित बाढ़ की स्थिति ला देखत हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ा करे के संगे संग संवेदनशील क्षेत्र मन में निगरानी रखे और बाढ़ आपदा होमगार्ड और रेस्क्यू टीम ला अलर्ट मोड में रहे के निर्देश दे है। ओती सरगुजा जिला में लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम नागम में काली संझा गाज गिरे ले दूझन लेका मन के मौत हो गए। उन्हें दूझन दूसर लेका मन झुलस गए हैं। घायल लेका मन ला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। यही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला में हुए भारी वर्षा और जल भराव की स्थिति के गंभीरता देखत हुए प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव काम में कोनो भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरते के निर्देश दे हैं। मुख्यमंत्री है अधिकारी मल्ला इहू निर्देश दे है कि प्रभावित क्षेत्र मन में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा समेत सबो आवश्यक सुविधा बिना कोनो देरी के उपलब्ध कराए जाए। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजयनगर इलाका में काली देर रात एक जन कारोबारी हा अपन पत्नी और 3 जन लड़का मल्ला कथित तौर में भोजन में जहर देके मार डरिस और बाद में आत्महत्या कर लिस। मिले जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति हा पुराना बैटरी के खरीदी बिक्री के कारोबार करत रहिस। पुलिस हा मृतक मन के शव बरामद कर जांच शुरू कर दे है। खेल और युवा कल्याण विभाग है बच्चर 2025-26 के खेल पुरस्कार, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, प्रेरणा निधि, नगद पुरस्कार और डाइट मनी पर आवेदन आमंत्रित करे है। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला खेल कार्यालय, खेल संचालनालय और राज्य खेल संघ बन के माध्यम ले घलो करे जा सकते है। राज्य सरकार डहाल ले 13 जुलाई ले आयोजित HPV टीकाकरण सप्ताह के तहत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में पूरा प्रदेश में सर्वाधिक HPV टीकाकरण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल करे है। जिला ला करीब 4000 नोनी मन के टीकाकरण के लक्ष्य मिले रहिस। स्वास्थ्य विभाग है जिला के 74 विद्यालय मन में व्यापक स्तर में टीकाकरण अभियान चला के राज्य में सर्वाधिक HPV टीकाकरण के नवा उपलब्धि दर्ज करे है। 32वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत जिला समन्वयक और रिसोर्स शिक्षक मनबर काली रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के आयोजन करेगी। इस कार्यशाला के उद्देश्य प्रदेश

के शिक्षक और जिला समन्वयक मल्ला राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के नवा थीम परियोजना निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली ले अवगत कराना रहीस ताकि विद्यार्थी मन स्थानीय समस्या मन पर आधारित वैज्ञानिक परियोजना तैयार कर राष्ट्रीय स्तर तक अपन प्रतिभा के प्रदर्शन कर सकें। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले शुरू हुआ थे। 13 अगस्त तक चलैया ये सत्र बर काली सर्वदलीय बैठका बलाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष डहाल ले लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत ले अस्वीकृत हो गए और मौसम विभाग अवैया 48 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी वर्षा हुए की चेतावनी दे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिलावत है। जय जोहार।

अभी छत्तीसगढ़ी में समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम का शेष भाग। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और सुनते हैं अगर तुम न होते फिल्म से किशोर कुमार का गाया ये गीत। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है आरडी वर्मन ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशें आई हैं लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। कोल सिटी बरका काना से हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक। अडार नांदघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी वर्मा। भिलाई 3 चरोदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया। पंजोलिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। बोरी खुर्द से हैं सुधाकर राजी जाधव, प्रशांत जागुताई, साक्षिताई, राजे जाधव। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम। जालंधर से हैं रोशन जहां, नुसरत जहां और मन्नत जहां। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीता रजत, मयंक भाटिया। हरदे सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, कृष्टि पटवा। भानबेड़ा मुंगवाल से हैं भारत राम पटोडी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष पटोडी। अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी ठाकुर। दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा। दतरंगी भाटापारा से ही हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और मुखेलाल वर्मा। संबलपुर कांकेर से हैं फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। दिल्ली से हैं मालती शर्मा, माया शर्मा, दिव्या शर्मा और सीमा शर्मा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अगर तुम न होते से किशोर कुमार का गाया ये गीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: इस संदेश के बाद आइए सुनते हैं फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, और गीत के लिए फरमाइशें आई हैं हमारे पास नैला बुड़सरा जांजगीर से, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमाबाई, विष्णु प्रसाद तिवारी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सी टी दीवाना, भाटापारा से हैं हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल, चंपा साहू, बुड़सरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, लूथरा कमरिया से हैं अकरम अमीन, अर्श, अतिका, लगहान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल, भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर और नारायण यदु, नलगोड़ा तेलंगाना से हैं मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस,

0: तबस्सुम, दुर्रा भाटना भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव सानेत्राम, भूपेंद्र साहू, लूथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, जिला बोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु, प्रिया और निकिता, दिल्ली से हैं नीरज अग्रवाल, सहज, श्लोक, प्रियंका, श्रेयांश, अनुभूति अग्रवाल, बठेना पाटन जिला दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, पार्थ कश्यप, मिथिलेश, टोमिन बंछोर, यश, प्रयाण और शिवम वर्मा, दिल्ली से हैं बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी, नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल सहनी, पिंकी सहनी और डॉक्टर अफजल मलिक, करजत मुंबई से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदक, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, आमना, नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद फूलवाले, गिरिडीह झारखंड से हैं साइमा नवाज, मोहम्मद यासीन अनजान, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत सादिया। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

ईमेल करेंगे। सुने आप सुन रहे हैं श्रोताओं का आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से, और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म रोटी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, गांव लोगट ठाकुरवाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरलाल, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के, महसौल सीतामणि से हैं अक्रम हुसैन, प्रिंस इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना, वसीम आरिज, वसीम नदीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा और पूनम शर्मा, लसुड़िया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं रोटी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत।

श्रोताओं, ई मेल करें कि सुने भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हम इस कार्यक्रम का शेष भाग लेकर आएंगे 7 बजे। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: रायपुर से रिले किए जाएंगे।
1: जी आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता खत्म की। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कल राज्य सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया गया 136 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्वयं उसकी कार्य

0: शैली और जनविश्वास का प्रमाण है। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 पर अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। चर्चा में पक्ष विपक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने और इसके प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुहन सिंह तथा एमके राउत के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा तय दरों से अधिक महंगाई राहत राज्य नहीं दे सकेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि निर्णय मध्य प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त कर लिया गया है।
1: मध्य प्रदेश से सामंजस्य स्थापित करते हुए, उनसे सहमति प्राप्त करते हुए, दोनों का एक एग्रीमेंट होते हुए, एमओयू होते हुए, हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब भविष्य में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अगर डीए बढ़ाता है तो उसे मध्य प्रदेश से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और तत्काल लागू हो जाएगा।
0: भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनावों में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 से अधिक मीडिया पेशेवर शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 95 करोड़ मतदाताओं वाली मतदाता सूची एक जीवंत दस्तावेज है। सम्मेलन में चुनावी प्रक्रिया, तकनीकी भूमिका और मीडिया की जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी भाग लिया। खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के खेल पुरस्कारों, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, प्रेरणा निधि नगद पुरस्कार और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला खेल कार्यालय, खेल संचालनालय और राज्य खेल संघों के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। राज्यपाल रमन डेका ने आज रायपुर में आयोजित पीएसवाई राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट जिला शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज इंटरनेट और एआई के युग में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अपनी मौलिक सोच और अध्ययन की आदत को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की लत से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि डिजिटल एडिक्शन भी अन्य नशों की तरह हानिकारक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा 13 जुलाई से आयोजित HPV टीकाकरण सप्ताह के तहत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक HPV टीकाकरण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जिले को करीब 4,000 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य मिला था। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 74 विद्यालयों में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाकर राज्य में सर्वाधिक HPV टीकाकरण की नई उपलब्धि दर्ज की। गौरतलब है कि राज्य में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाकर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों

0: पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज प्रदेश में विस्तार रूप से वर्षा होने की संभावना है और बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, बिलासपुर, बालोड़ा बाजार और नीचे देखा है तो कांकेर और दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये सब वाला स्थिति जो है आगामी दो दिन तक रहने के चांस है। दो दिन के पश्चात वर्षा का गतिविधि में थोड़ा कमी आने की संभावना है, फिर भी उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इस बीच बिलासपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण 5 मेमू ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 3 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार तेज बारिश के कारण महानदी और शिवनाथ नदी सहित कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। जिला कलेक्टर ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखने तथा बाढ़ आपदा होमगार्ड तथा रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर जांजगीर चांपा जिले में लगातार बारिश से कर्रा नाला बांध का तटबंध टूटने से ग्राम कोटमी सोनार के कई घरों में पानी घुस गया है। इसके मद्देनजर इस गांव के 40 परिवारों के 125 लोगों को अस्थायी कैंप में रखा गया है। वहीं रिंगनी कुगदा और बिलारी कचंदा गांव के कंजी नाला पुल के ऊपर 3 फीट पानी बह रहा है। ये मार्ग पिछले 24 घंटे से बंद है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इधर सरगुजा जिले में लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम नागम में कल देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य बच्चे झुलस गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में कल देर रात एक कारोबारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को कथित तौर पर भोजन में जहर देकर मार डाला और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति पुरानी बैटरी की खरीदी बिक्री का कारोबार करता था। पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के ग्राम कदेर में बीएसएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इनमें 8 बंदूक, लॉन्चर, कारतूस के अलावा पेन ड्राइव और 18 मेमोरी कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस भी रखे गए थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने सीएसएमसीएल ओवरटाइम भुगतान घोटाला मामले में तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सहायक कमांडेंट के लिए भर्ती परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। 2 पालियों में आयोजित ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। और दुर्ग पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता खत्म की। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: अभी प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे ही लीजिए सुनिए, ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम का शेष और अंतिम भाग। कार्यक्रम में सुनते हैं हाथी मेरे

साथी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल सरों में ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए फरमाइश आई है अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर ने सुनना चाहा इस गीत को। साथ ही फरमाइश और लोगों की आई है सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा, सुरेश नारंग, पथिक और कृषिव। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, आरती और प्रभा देवी तामुरिया। दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनीस, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी से ये गीत।

और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सौतन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। सावन कुमार का गीत है और संगीत उषा खन्ना का। इस गीत के लिए फरमाइश आई है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा। जामनिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। भूत कशार लोरमी से हैं दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम धनराज मरकाम। मालोट पंजाब से हैं राज शर्मा, योगेश मीना, निवान सौरभ, शाइना मैंडी शर्मा। रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, जैतेग वीरक, बलविंदर मीका वीरक। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। खंडवा से हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव सैनी। बठेना पाटन से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश साहू और रेशमा साहू। पौड़ी भाटा कलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सौतन से ये गीत।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म कुदरत से परवीन सुल्ताना की आवाज़ में। गीत मजरू का है और संगीत आर डी वर्मन का। इस गीत के लिए फरमाइश की है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी चौहान, गांव जाखोदा राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू, योगिता।

श्रीवास रंजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव मंदूरकर। यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी मनवर, प्रियांशी। देलगुर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। इंदौर से मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, खुशी वंदना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। पांडर कड़ौड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री, धनश्री बुरांडे। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। बुड़गहन से हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुमार। हरियाणा से हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। ओरेठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा, नेहा साहू, मोनिशा साहू। लालपुर मारो से हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, निशांत ध्रुव। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन क्रिस्टो डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार। ग्राम ग्राम खोंदला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि पैकरा। निमनाबाद जिला जैंद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। ग्राम बाघा मुड़ा कुमा खान से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। जालंधर से हैं रोशन जहां, नुसरत जहां और मन्नत जहां। मस्ताना पूर्णा जंक्शन से हैं अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के सात माफ कीजिएगा संध्या के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मल्ला जीवन भैया के राम राम जय जोहार। किसान भाई हो खेती किसानी के काम में लगे हो, निश्चित रूप ले पानी की कमी पूरा हो गई है और वो खेती के जिन काम है वह भरदरा है कि देव है ना। फिर अभी बेरा चलत है जुलाई महीना के और ऐसा बेरा में हमन 12 महीना गर्मी की बेरा थे तो रोथन के भाई छाए नहीं मिला थे है ना। तो अभी पेड़ लगाए के बढ़िया समय चलत थे, पर्यावरण संरक्षण हम सबो के जिम्मेदारी हवे। का है पेड़ से हमला शुद्ध हवा मिलते, सौ बीमारी के दवा पेड़ शुद्ध मिलते हवा है ना। तो भाई पेड़ लगाई आओ, पेड़ से दिखाओ हमला पाना मिलते, लकड़ी मिलते, फल फूल मिलते, औषधि मिलते, जड़ी बूटी मिलते और कई प्रकार के हमर जिन्हें लाख लासा ये सब पेड़ के माध्यम से मिलते। किसान भाई हो और पेड़ से ही हमर जिन प्रकृति है आसपास के वातावरण है दूषित रहते वाला शुद्ध करके बढ़िया हमला शुद्ध ऑक्सीजन हमर जिंदगी जियेला बढ़िया प्रदान करते वो है पेड़। और पेड़ के ऐसा गुण है जिन हर हमर अभी वर्षा होते वो वर्षा ला वो मानसून जिन हवा है वाला रोके के वो क्षमता रही थे जेखर से रोक के बढ़िया बारिश घला कराते। फिर अभी झमाझम बारिश चले थे आप सब जाना तो किसान भाई हो, तो ऐसा बेरा में हम सबकी जिम्मेदारी हवाई के रूख राई अगर धरती ला बढ़िया ज़्यादा सवारी लगाई बढ़िया और छायादार काहे पहले के जिन बड़े बड़े पेड़ है उमन अब पुराना हो गए के देवा लंबा बेरा हो गए है जेखर से उखर कबीला पूरा करे वर हमला सबो झल्ला एक झन के नहीं संगी हो, जितका हो सके सब साथी संगी मन है एक है चार है पांच है अपन हिसाब से जितका लगाओ जेखर से धरती के कोरल भाई हम छाया युक्त हरियाली युक्त बनवाबो ये हमन प्रण करी। अब बेरा अभी चलत है तो काम अभी करे के ही समय है भाई। आवाज सुनी ये संदेश फिर अवगठियाबू अपन से।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जशपुर खैरागढ़ छुई खदान गंडई कोरबा महासमुंद कोंडागांव रायगढ़ राजनांदगांव नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित धान असिंचित मक्का मकई सोयाबीन मूंगफली तुअर अरहर मूंग उड़द कोदो कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी मार्गदर्शन सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ सुरक्षा कवच पाओ।
2: किधर है
3: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट?
2: ये तो झटपट काम है।
3: कैसे?
2: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
3: और बाकी चेंजेस?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से सिर्फ बैंक

0: ऑथराइज्ड चैनल से ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: तो भाई अभी पर्यावरण के हमला चेत करना है, आओ कतका हमारे आसपास देखो दूषित हो जाते, हमार जरूरी आवश्यकता पूरे बर कई ठन बड़े बड़े कारखाना भी खुले रहते जेखर से धुआं निकलते, ये सब चीज ला पेड़ एक ऐसे है जिन्हें शुद्ध कर देते और ज़्यादा ले ज़्यादा रुखवा रही तभी ये सब काम हो बढ़िया ढंग ले शुद्धिकरण के ज़्यादा हो सकी। तालाब है, नदियाँ है, बांधा है, खेत के पार है, खाली टिकरा टार है, सब में बढ़िया कतका घनघोर पहली रूख राई रहे, खेत के बीच में कहूँ गरुआ है पेल दह चर चरत है ते दिखत नहीं रही से, फिर अभी के बेर हम देखी तो घर के तीले खड़ा हो जाए।

कारखाना भी खुले रहते, जेकर से धुआं निकलते। ये सब चीज ला पेड़ एक ऐसे है जिन्ह शुद्ध कर देते, और ज्यादा ले ज्यादा रुखवा रही तभी ये सब काम हो बढ़िया ढंग ले शुद्धिकरण के ज्यादा हो सकी। तालाब है, नदियां है, बांधा है, खेत के पार है, खाली टिकरा टार है, सब में बढ़िया कतका घनघोर पहली रूख राई रहे। खेत के बीच में कहूँ गरुआ पेल दह चर चरत है तेह दिखत नहीं रही से, फिर अभी के बेर हम देखी तो घर के तीले खड़ा हो जावा तो वो 2 किलोमीटर तक के बिल्कुल दिखत है, कौन आदमी कहाँ जाते है ना। यानी पेड़ है बिल्कुल कम हो गए है, नंदात जाते काटत जाथन भाई, हमला काटत हन ये तो अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हमला ज्यादा ज्यादा रुख लगाई है ना। एक ठन काटत हन और कहो 4 ठन रुख लगाए उखर बदला, तो भाई ओमा लगाना बस नहीं है, किसान भाई संगी साथी हो पहली रुखवा लगा के हमार ओमा फोटो खिंचवा लेन, उखर बाद भाई पिछू साल देखी तो रुख के का हाल है, अतः पता नहीं। ऐसा काम नहीं करना है, जब हमन कोई भी काम करत हन तो ओला पूर्ण रूप से जब तक वो हर बड़े नहीं हो जाही, सक्षम नहीं हो जाही बढ़िया, तो ओका सुरक्षा प्रदान करना है। ये सब निभा के जिम्मेदारी हमर सभी जन के हावे है ना। तो खेती खार है, बारी कोला है, आसपास से सब में बढ़िया हरियाली रही, हरियाली रही तो निश्चित रूप ले गर्मी के बेरा में छाया मिल ही, फल मिल ही, फूल मिल ही, चिराई चुरगुन के बसेरा हो ही, जे हमार जरूरी संगी के देव आसपास हमार कोलाहल बढ़िया चिराई चुरगुन के मिलते, जिन हमार मन लब प्रफुल्लित कर देते है ना। तो भाई एखर बर चाही उनकर घर द्वार वही में बसेरा करते। भाई हम तो आनी बानी के घर बना लेबो, लेकिन उनकर घर बनाए बर तो पेड़ चाहिए ना भाई, उनकर बसेरा बर रहे बर। और ये कई छंड हमारे जीव जंतु है ना, जिला पेड़ में ही निस्तारी करे पड़ते, और उखर निस्तारी से कई ठन हमार जरूरी काम जरूरी चीज भी हमला फायदा के मिलत रहते है ना। तो निश्चित रूप ले पर्यावरण ला बढ़ाना है, सुंदर शुद्ध रखना है आसपास ला, तो उखर बर हमला रूख राई ज्यादा ले ज्यादा धरती के कोरा में लगा ले पड़े। हमार सियान मन पहले देखो जी तालाब के पार में कतेक बढ़िया बढ़िया रुख लगा रहे हैं, जिन बड़का बड़का अभी तक हवा जेखर फल हम अनाज कूद कूद के खाथन है, छाया में उखर बैठन घुलंठन, और हमू में लगाबो तभी तो आगू बेरा पेड़ रही, तो हमरो आने वाला जेने वंशज है वो मन बढ़िया नाम लही भाई फलाना फलाना लगा रही से पेड़ रुख रही ला। तो ऐसा काम में नेक काम में हमला सबो साथी आगू आना है, ये नहीं कि ये लगा ही तो हम लगाओ, ऐसा काम नहीं करने किसान भाई बहन हो। आप अभी जुलाई के महीना में बिल्कुल गिनती के आप कर लो के प्रण करो कि हमला इतका रुख लगाना है, लगा के ला बड़े करके ही छोड़ना है ना भाई। ये सुंदरता प्रदान करते, धरती की कोरल हरियाली देते, जेखर से हमार कतका कन के आवश्यकता पूरा होते। भाई खेती किसानी करे बर पहले तो आज भी हमार कतका साथी है जे मन कृषि कार्य में नांगर है, कोपर है, दतारी है, इस सब काम पर लकड़ी के उपयोग करे थे, और सबों के पास आधुनिक जेने कृषि यंत्र निकले वह उपलब्ध नहीं है। तो इखर बार घर बनाना है तो भी लकड़ी चाहिए, इमारती लकड़ी चाहिए है ना। जलाए बर आजकल तो भाई बिल्कुल अब सब सुरक्षित हो गए हो है ना, गैस चूल्हा बढ़िया जला था, ये बढ़िया बात है। अब फिर एकर छाया ज़्यादा से ज़्यादा करना है, धरती के कटाव रुकते, वर्षा के पानी में पेड़ रुख रहते तो धरती के नीचे में पानी के स्रोत बढ़िया बने रहते। ये सब बात के चेत करत हमला पर्यावरण के बढ़िया शुद्धता के कुति हमला आगू बढ़ना है, संगी भाई बहन हो यही बात के चेत करना है। और हमू मन अपन यदि कार्यक्रम कुति आगू बढ़त हन किसानवाड़ी कार्यक्रम कुति, तो भाई सुनो ये किसानवाड़ी कार्यक्रम कुति चली हमू मन।

किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत करत हूँ जीवन भैया जम्मू श्रोता संगवारी भाई बहनी मन के। किसान भाई हो खेती में रोपा लगाए बियासी करे आओ लेंजा फोरे कई ठन काम है बिल्कुल आप मन के चलते खाए पिए की फुर्सत नहीं है। निश्चित रूप ले जल्दी जल्दी काहे लोहा लोहा खेती किसानी काम ल जल्दी करके तैयारी हमार खेत है बढ़िया हो ही तैयार हो ही फसल तभे आगो बढ़िया हमन के कोठी डोली में धान आते यही बात के चेत करत हमर किसान मन अभी लगे भाई। और हमू मन भाई आप मन के बढ़िया खेत के फसल है जल्दी जल्दी लगे यही काम हम करथन। आज हम चर्चा करबो आज के बात मुनगा लगाओ लाभ कमाओ। मुनगा के पेड़ है किसान भाई हो बहुत फायदा के हवे। देखो मुनगा है यह कतका दवाई के रूप में एक उपयोग करे जाते एक भाजी में खूब फायदा है एक भाजी खाए ले। और एक मुनगा है जेन है छिवारी काम घला आती है ना आज एक दवाई बढ़िया बना जाते जेखर से हमारे शरीर में बढ़िया फायदा के उपयोग के काम करे थे। तो मुनगा के खेती करो और कतको किसान मन चतुरा किसान मन जानकारी लेके करे थे वो मन निश्चित रूप ले धान से ज़्यादा इखर मुनगा की खेती में वो मन एक साल में पैसा कमा लेते और तभी उनकर सफलता की कहानी घला आगे बढ़िया विकास के रास्ता बढ़त जाते। बात करबो हमर किसान भाई हो पशु में बरसाती रोग के घला खूब प्रकोप रहते यही बात के चेत करना है। काहे बरसात के बेर आते तब माछी मंगसा आनी बाड़ी के जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया में सब धरती के कोरा में तिथि घूमे लागते खाना पीना सबों में मिंजरा हो जाते जेखर से हमर पशु मन के रोग राय के प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाते। तो ऐसा बेरा में जैसे गलघोटू है ना मुँहपका खुरपका है थनैला है या कृमि के पेट में जोन है ये सब समस्या पशु मन में शुरू हो जाते एक बार टीका लगवाना बहुत जरूरी है यही बात के चित करना है। और एक स्थिति हमारे जिन पशु है उखर देख रेख करना हमारे घेरी बेरी बहुत बहुत जिम्मेदारी खला हुआ है ना। बात कर वो हम जैसे खेते पशु मन के तो उनका संतुलित भोजन देना है ना बिल्कुल ये नहीं कि पैराला डाल दें अगर हो गए काम ऐसे नहीं है सूखा और हरिया चारा दोनों मिला के देना है। तो पशु के गलत चेत करना है रोग राई ले बचाए बर और चेत करना है उखर जेन कोठा है उमा बढ़िया प्रकाश की व्यवस्था कराओ आसपास जेखर से अहरू बिछरू आपके जेन गिया कोठा है उखर आसपास झाया यह बात के चेत करते रहना है भाई। हम मन आत्मन पर चेत कर थन बढ़िया कि देखो सियान मन बढ़िया पैठा में बैठे लोरी चंदा है ना और ढोला मारू के किस्सा सुनाते आल्हा उदल के किस्सा सुनाते तो बिल्कुल हम मन आप मल्ला गीत के माध्यम से सुनावा था रेखा देवार उनका साथी के स्वर में ये भरथरी गीत ला।

0: किसान।
1: तो भाई अभी सुने रेखा देवार के स्वर में ये भरथरी गीत ला, और अब हम आप मल्ला सुंदर भेंट वार्ता सुनावा था भिंडी के उन्नत उत्पादन तकनीक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमिला जोगी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय मुंगेली गोट बात कर तिंकर से हेमंत महंगू भैया। तो सुनिए भेंट वार्ता।
0: किसान भाई हो, भिंडी रमकेरिया के उन्नत उत्पादन तकनीक ए विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर प्रमिला जोगी जी मन, जो हमें विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली में। तो सबले पहले तो स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर प्रमिला जोगी जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे। आप मन राम राम।
2: राम राम मांगू भैया।
0: सबले पहले जानना ये चाहत हन कि ये भिंडी रमकेरिया अगर हम किसान भाई मन लगाना चाहत हवे तो एकर लगाए के बोनी के उपयुक्त समय के अगर बात करबो तो कब ले कब तक के हमारे किसान भाई मन लगा सकत हवे।
2: भिंडी जैसे कि आप मन जानता हो रमकेलिया हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही चाव से खाया जाते, एकर खट्टा सब्जी भी बनते और सूखा सब्जी भी लभी हमारे यहाँ सबो जिन मतलब पसंद करते बहुत ज़्यादा, और पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा हरे हर एमा कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम कई प्रकार के तत्व

0: पाए जाथे और खास तौर पे सुगर जो बीमारी है ओकर बर बहुत लाभदायक हरे है भिंडी फसल ह। तो एकर लगाए के समय के बात करबो तो अभी बहुत ही उपयुक्त समय है, जून जुलाई के जो समय है हमार बरसात के खरीफ के ओमा भिंडी के फसल ला लगाया जाना चाहिए। और साथ ही फरवरी और मार्च जो गर्मी के सीजन स्टार्ट होते वो भी समय बहुत उपयुक्त है भिंडी फसल के खेती करे बर।
1: तो अभी समय है हमारे किसान भाई बढ़िया लगा सकत
0: जी।
1: अब बताते कैसन माटी में कैसन जलवायु में ये रमकेरिया भिंडी के खेती ला करे जा सकत हवे
0: जी। रमकेलिया हा गर्म और आद्र जलवायु के फसल है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु ही बहुत ही उपयुक्त है। जो तापमान है वो यहाँ 42 से 44 45 डिग्री ओकर से अधिक नहीं जाना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो मौसम है लगभग गर्म ही रहते और बहुत ज्यादा ठंड में भी एक जो बीज है वो अंकुरण नहीं हो पावे।
1: अच्छा,
0: तो हमारे यहाँ के एकदम उपयुक्त मौसम है। और साथ ही जैसे कि आप मन बोले हो कि गर्म और आद्र जलवायु के साथ साथ एकर जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है वो बलुई दोमट प्रकार के मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त रही थे।
1: अच्छा।
0: ज्यादा कन्हार मिट्टी में का है एकर मूसला जो जड़ होते ओला बढ़े बर जगह नहीं मिले, ज्यादा काला मिट्टी हो जाते, तो वही नाम से बलुई दोमट मिट्टी एकर बर उपयुक्त हवा।
1: अच्छा, अब बताते किस्म के
0: जी।
1: तो ज्यादा उत्पादन खातिर किस्म के चुनाव करना है तो कौन कौन किस्म है उपयुक्त होगी और एकर किस्म के बारे में बताओ आप मन।
0: जी जी,
1: उन्नत किस्म कौन कौन से?
0: उन्नत किस्म के हम बात करबो तो हमार जो बेंगलोर में अनुसंधान केंद्र है, वाराणसी काशी में भी अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से कई प्रकार के उन्नत किस्म हाइब्रिड किस्म भी निकले हैं जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन देते। तो यही में जैसे कि आपके अर्का अनामिका है जो बेंगलोर से निकले है, अर्का अभय है वो भी बेंगलोर से निकले है। साथ ही आजकल आप मन लाल रंग के भिंडी भी देखा था।
1: अच्छा।
0: तो रेड भिंडी के नाम से एक जो किस्म निकले है वो भी बेंगलोर से ही निकले है।
1: अच्छा।
0: तो अर्का अनामिका की अगर बात करबो तो इमा लगभग 5 से 6 धारी रही थे, एकर खुशबू बहुत ही अच्छा थे।
1: अच्छा।
0: और लगभग 130 से 135 दिन में ये किस्म 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उपज भी देते।
1: अच्छा।
0: वही प्रकार से जो अर्का अभय है वो भी लगभग 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उपज देते।
1: अच्छा।
0: साथ ही एक अर्का निकिता करके एक हाइब्रिड किस्म है, संकर किस्म, वो अगेती प्रकार के, अगेती मतलब 39 दिन में ही मा फूल आए बस शुरू हो जाते और अगर पहला तुड़ाई जो है वो 43 दिन में किसान भाई मन कर सकते थे।
1: अच्छा।
0: उत्पादन के बात करबो तो 210 से 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ये किस्म उत्पादन दे थे।
1: अच्छा।
0: साथ ही अगर हम जैसे कि मैं बताया आप मतलब कि वाराणसी से भी बहुत सारे किस्म निकले है, तो काशी लालिमा है, काशी चमन है।
1: अच्छा।
0: काशी पराक्रम है, ये कुछ किस्म है जो की वाराणसी से निकले है वह।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: किस्म की बात हो गई। अब बीजा के अगर मात्रा के बात करबो तो एकड़ पाछू हेक्टर पाछू कतक बीजा लग जात हो ही?
0: हमारे किसान भाई मन अब हाइब्रिड में थोड़ा कम बीजा लगते लेकिन सामान्य रूप से 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हमन किसान भाई मन भिंडी के बीज उपयोग करके अपन खेती कर सकते हैं।
1: अच्छा, बीजो उपचार करना का एकरो खेती करते हैं हमारे किसान भाई मन तो जरूरी है का? कैसे ढंग से बीजो उपचार लग करें?
0: जी जी बिल्कुल, बीजोपचार एक प्रकार से जैसे हमन हमार लइका होते थे टीकाकरण करथन वही प्रकार से हमार फसल में भी काम करते। तो निश्चित रूप से हमार किसान भाई मल्ला हर फसल के बीजोपचार अवश्य रूप से करना चाहिए। बीजोपचार जो है ओमा खर्च कम लगते, वो हमार भविष्य में जो दवाई पानी में बीमारी में कीड़ा में जो खर्च है ओकर कटौती कर देते। और निश्चित रूप से 50 से 60% तक एमा बीमारी कीड़ा लगे की संभावना घट जाते। तो हमार किसान भाई मल्ला एक किलो बीज के पछू में 2.5 से 3 ग्राम बाविस्टीन या थायराम कोई सभी फफूंद नाशक दवाई के उपयोग करके बीज उपचार अवश्य करना चाहिए।
1: अच्छा, खेत की तैयारी की अगर बात करबो तो अगर रमकेरिया की खेती भिंडी की खेती हमारे किसान भाई मन करना चाहत हमें तो खेत ला तैयार कैसे ढंग ले करें एला बढ़िया से बता देता आप।
0: खेत की तैयारी हमारे किसान भाई मन वैसे तो बहुत अच्छा से करते हैं। सब मन ला जानकारी है कि जो सब्जी के फसल है चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना हो ओकर बर भुरभुरा मिट्टी ही बहुत उपयुक्त रही थी। ते नाम से हमारे किसान भाई मन ला अच्छा गहरा जुताई करना चाहिए, मिट्टी ला पूरा भुरभुरा करना चाहिए, ओकर बाद पाटा चला के अपन खेत के समतलीकरण करना चाहिए। और एक और मुख्य बात यह है कि किसान भाई मल्ला जो जल निकास है ओकर मुख्य रूप से बहुत अच्छा व्यवस्था करना चाहिए ताकि ओकर खेत में पानी के जमाव न मत हो सके।
1: अच्छा, ये तो इस खेत तैयारी की बात। अब लगाए की विधि की अगर बात करबो तो रमकेरिया भिंडी लगाना है तो हमारे किसान भाई मन कौन से विधि ले कैसन विधि ले अपनावे जेकर ले अच्छा उत्पादन हो सके?
0: जी, आप जैसे कि बताएं कि कभी भी आजकल बारिश हो जाते बरसात हो जाते तो खेत में पानी के जमाव की समस्या बने चली थे किसान भाई मल्ला। अब अगर कहीं पानी जम गिस तो फिर फसल पूरा नुकसान हो जाते। ते नाम से किसान भाई मल्ला जो मेढ़ पद्धति है, मेढ़ मेढ़ बना के जो नया पद्धति है अभी ट्रैक्टर के माध्यम से मादा बना बना के जो किसान भाई मन खेती करते वो बहुत ही उपयुक्त रही थे। 15 सेंटीमीटर से लगभग खेत से ओकर मेढ़ा ऊंचा उड़ जाते जे नाम से पानी भरे में ही कोई फसल के नुकसान नहीं हो सके। हाँ। और लगभग

0: 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 30 सेंटीमीटर के पौधा से पौधा के दूरी रख के किसान भाई मनला बीज के बुआई करना चाहिए।
1: अच्छा, सिंचाई की अगर व्यवस्था करबो बात करबो तो अभी तो खैर बरसात के मौसम में तबो ले का पानी नहीं गिरा थे, ऐसा स्थिति में सिंचाई करे जा सकत हवे। और जल निकासी खातिर कोई अच्छा सा विधि अगर हो कैसे ढंग से जल निकासी घला व्यवस्था हमारे किसान भाई मन करें, यह बात तो बता देता।
0: जल निकासी के जैसे मैं उसी वही समय बताया आप मतलब जब किसान भाई मन खेत के जोताई करते और जब ओला समतलीकरण करते वही समय देखना है कि ढाल कौन तरफ जाते। अब जे तरफ ढाल जाते खेत के वही साइड में नाली बना करके और फिर पानी ला उकर एक साइड इकट्ठा कर देना चाहिए, ताकि अगर हमारे खेत में मान लवा ज्यादा बारिश के कारण पानी आ भी जाते तो वो साइड के जो नाली बनी किनारे में वो नाली से वो पानी है बाहर निकल जाए, तो वो जो पानी है वो कर जमाव नहीं हो पाई और हमार फसल ला वो नुकसान नहीं करी।
1: अच्छा,
0: हाँ सिंचाई के जैसे बात करबो तो बिना पानी के तो भाई फसल हो ही नहीं सके। तो अभी जो बरसात के सीजन है, अब सब्जी फसल अगर कोई किसान भाई लगा थे तो बोला ये निश्चित पहले ही कर लेना चाहिए कि ओकर पास पानी की व्यवस्था जरूर रहे। तो अभी जैसे बरसात के दिन आगे है, अगर बारिश हो जाते तब तो पानी की आवश्यकता नहीं पड़े। मिट्टी के नमी के स्थिति ला देखते हुए किसान भाई मनला सिंचाई समय समय पर सप्ताह एक एक सप्ताह के अंतराल में करना चाहिए। अगर पानी हवाई खेत में तो पानी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी सूखा हो गए है तो निश्चित रूप से किसान भाई मनला पानी डालना चाहिए। आप मन कहा सिंचाई के कई सारा विधि भी है, किसान भाई मन ड्रिप लगा सकते है, स्प्रिंकलर पाइप के थ्रू भी मन सिंचाई कर सकते है। तो ये जो सूक्ष्म सिंचाई विधि है एमा कहा होते है कि हमारे पानी के बचत हो जाती है। तो ये बात के भी किसान भाई मनला ध्यान रखना चाहिए कि बहाव विधि से ना करके स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप विधि के माध्यम से पानी या सिंचाई करना चाहिए।
1: अच्छा, खातू माटी की अगर बात करबो तो हर फसल में भाई जरूरी है खाद उर्वरक के देना, तो खातू माटी के कतेक मात्रा में देना हुई और कब कब देना हुई ती बात ला बढ़िया फुरियाक बता देता।
0: जी जी, खातू माटी हमारे किसान भाई मन तो अब बहुत दिन से खेती करत चलाते हैं, हमारे यहाँ के मुख्य व्यवसाय ही खेती हरे। तो पहले के जमाना में जैसे बढ़िया गोबर के खातों उपयोग करत रही है तो ओला जरूर निश्चित रूप से अभी भी अपन खेत में शामिल करना चाहिए। लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद किसान भाई मल्ला अपन खेत में खेत के तैयारी के समय ही डालना चाहिए। अच्छा, जुताई के बाद ओकर साथ ही साथ किसान भाई मल्ला हम तत्वों के बात करबो तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास जो सामान्य रूप से हमारे किसान भाई मन डालते, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास ये खाद के कुल मात्रा है। जेमा जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ला दो भाग में बांट के किसान भाई मन ला देना है। 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास ला किसान भाई मन ला खेत के तैयारी के समय में आखिरी में मिला देना है खेत में। और बचत जो मात्रा है ओला 30 दिन के अंतराल में फिर खेत में निंदाई गुड़ाई करे के टाइम में डालना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो उकर से किसान भाई मन समझ में खुद आ जाए, मतलब दिखी मतलब जरूर दिखाई दी कि जो फसल है उकर बढ़वार बहुत अच्छा हुई।
1: अच्छा अच्छा जी, अच्छा। ये तो खातू माटी हो गए, अब का है हर फसल में देखे जाते खरपतवार नींदा है उपज जाते
0: जी।
1: तो का ये रमकेरिया के खेती में घला ऐसा कौन कौन से खरपतवार है जो उपस्थित है, जेकर नियंत्रण खातिर उपाय का है तीवला बता देता तो अच्छा होती।
0: एकर नियंत्रण बर मुख्य रूप से बुआई के पूर्व ही किसान भाई मल्ला सचेत रहे बर पड़ी। तो इमा बासालीन है या स्टाम्प है, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन अपन खेत में उपयोग कर सकते है।
1: अच्छा।
0: बस ध्यान ये रखना है कि बुआई के पूर्व 2-4 दिन पूर्व ही खेत में छिड़काव कर देना है।
1: अच्छा।
0: ताकि उकर जो खरपतवार है उकर नियंत्रण हो सके। और जैसे मान ले बाद भविष्य में 20 दिन बाद 30 दिन बाद अगर किसान भाई मन दिखाई दे थे कि भाई निंदा जाग गए है या खरपतवार जाग गए है, तो एक बार उमन हाथ से निंदाई गुड़ाई भी करवा सकते है।
1: अच्छा, अच्छा। जी, निंदाई गुड़ाई के बाद में एक समस्या और आते कीट व्याधि के।
0: जी जी,
1: तो रमकेरिया के फसल में कौन कौन से किड़वा है कीट है जो उन्हें फसल ज्यादा करके नुकसान पहुँचात हो, तेकर बार हमारे किसान भाई मन कैसे सचेत रहें का नियंत्रण के उपाय करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे जो फसल है भिंडी के फसल में खासकर बहुत ज्यादा कीड़ा और बीमारी की समस्या आते, और खास तौर पे अगर देखा जाए तो इमा फल और तना छेदक, फल और तना छेदक इमा मुख्य रूप से लगते। तो मैं कुछ कुछ कीट के आप मतलब जानकारी देता हूँ विस्तार से हमारे किसान भाई मनला। अगर फल और तना छेदक के कीट लगा थे तो मतलब जो भिंडी के फसल फल में भी दिखाई दी वो चीज और उकर तना में भी छेद के छेद दिखाई दी, वो कीड़ा का करते कि छेद करके अंदर घुस जाते और फिर उकर अंदर के भागला खाते।
1: अच्छा।
0: वैसी फल में भी छेद करते और अंदर के भागला खाते। तो कुछ कुछ एक्सक्रीट भी करते मतलब बाहर निकालते, जैसे काला काला भिंडी के फसल में फल में आप मन अक्सर देखे हो। तो हमारे किसान भाई मनला कीड़ा दिखे के बाद ही दवाई के स्प्रे नहीं करना है।
1: अच्छा।
0: का है भिंडी के

0: फसल जैसी 25-30 दिन के होते
1: अच्छा
0: और मतलब नीम के जो नीम तेल आते ओकर
1: अच्छा
0: स्प्रे करना शुरू कर देना चाहिए। काबर की कीड़ा लगे के बाद जनरली हमन किसान भाई मन समझत हो चीज ला कि कीड़ा लगे के बाद आधा फसल ला समझाओ के नुकसान कर रहे कीड़ा है। और वही नाम से पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब पहले से आप ध्यान रखो
1: हाँ।
0: और नीम के तेल जो है उकर स्प्रे आप करना चालू कर दो
1: अच्छा।
0: कंटिन्यू 30 दिन के बाद से ही
1: हाँ।
0: और बाद में जैसे आप मतलब फिर भी लक्षण दिखते
1: हाँ।
0: तो आप इंसेक्टिसाइड के भी किसान भाई मन स्प्रे कर सकते थे। एमा क्लोरोन्ट्रा नीली प्रोल करके एक दवाई आते जो मुख्य रूप से फल और तना छेदक कीट पर बहुत ही लाभदायक है। ओकर अलावा जैसे हम कीट के बात करबो तो एमा माहो भी लगते माइट्स भी लगते तो एकर कंट्रोल करे पर किसान भाई मन इमिडा क्लोप्रिड करके इंसेक्टिसाइड आते जेकर स्प्रे कर सकत है।
1: अच्छा ये तो आप कीट के बताया किरवा के नियंत्रण के उपाय गला बता दे आप मन। अब रोग में अगर बात करबो तो कौन कौन से ऐसे रोग हा ये फसल में ज्यादा करके लगते ये ले बता देवा नियंत्रण के उपाय गला बता देवा।
0: जी जी जैसे कि भिंडी के हम किरवा के बात करें तो ओकर बीमारी में मुख्य रूप से जो खेत में दिखाई देते आप मन देखे हो जैसे कि आप भिंडी के खेत में जाओ तो आप मन ला पत्ती में पीला पीला धारी दिखाई शुरू हो जाते
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो ये मुख्य बीमारी है। एकर कारण का होते कि पत्ती के अब चूंकि पीला हो गए वो नाम से पौधा जो है वो अपन खाना ला बनाए नहीं सके और जब पौधा ही अपन भोजन नहीं बना पाई तो फिर उत्पादन कैसे दी। तो मुख्य रूप से यही एक बीमारी है जिला पीला पित्त सिरा मोजेक वायरस कही थे ये बीमारी ला। एकर नियंत्रण जैसे कि फसल में अगर लक्षण दिख गए ओकर बाद एकर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है।
1: अच्छा
0: एला ठीक नहीं किए जा सके बीमारी ला। तो किसान भाई मन ला का करना चाहिए कि जो भी बीमार ग्रस्त हमला पौधा दिखा थे
1: हाँ।
0: वो पौधा ला उखाड़ करके और मिट्टी में दबा देना चाहिए।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: ताकि ओकर माध्यम से हमारे जो बाकी स्वस्थ पौधा है ओमा वो बीमारी हर मत फैले।
1: अच्छा
0: तो एकर से का हो ही आगे फैले पर बंद हो जाए आगे बढ़े जो कीड़ा जो वाला फैलाते वो बीमारी ला ओकर जो एफिड के माध्यम से वो फैलाते तो वो जब हम स्प्रे करबो इंसेक्टिसाइड के तो वो इंसेक्टिसाइड एफिड ला मार दी और हमारे जो ये बीमारी है वो फैलना बंद हो जाए एकर रोकथाम हो जाए। ओकर अलावा और बहुत सारे बीमारी लगते हैं जैसे कि कभी कभी फ्यूजरियम विल्ट मतलब सूखा वाले बीमारी भी लग जाते है ना। और पाउडर मिल्ड्यू में किसान भाई मन हेक्साकोनाजोल भी दवाई के भी स्प्रे कर सकते है। ये जो दवाई है लगभग 0.75 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ला छिड़काव करना है।
1: अच्छा अच्छा ये तो आप कीट बीमारी सबके नियंत्रण उपाय घला बता दिया। अब अगर बात करबो उन्नत उत्पादन तकनीक के अगर रमकेरिया भिंडी के खेती करत है हमारे किसान भाई मन तो कैसन उन्नत उत्पादन तकनीक ला अपनावे जैसन की आज के विषय हुए
0: जी
1: तो उत्पादन तकनीक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो एक बार बता देता आखिर में तो बड़ा अच्छा।
0: जी जी उन्नत उत्पादन तकनीक के बात करबो तो मुख्य रूप से ये है कि किसान भाई मन खाद के सही मात्रा में गोबर खाद के सही मात्रा में उपयोग करें सही समय में उपयोग करें साथ ही जो पौधा से पौधा के दूरी है ओला भी मेंटेन करना ओला भी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो पौधा है वाला बढ़वा पर पर्याप्त मात्रा में जगह मिलना चाहिए। समय समय में खाद पानी के जो देख रेख रख रखाव करना बहुत आवश्यक है। साथ ही जैसे मैं कीड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में लगते तो एक छोटे से प्राकृतिक उपाय मैं किसान भाई मत साथ बांटना चाहता हूँ कि एमा कीड़ा बहुत ज्यादा लगते फल तना छेदे वाले।
1: अच्छा।
0: तो किसान भाई मन ला का करना चाहिए कि खेत के चारों तरफ गेंदा के फूल के फसल
1: अच्छा
0: एक या दो लाइन में जरूर लगाना चाहिए। एकर से कहा होते जो कीड़ा वीड़ा मन है वो मन फूल में आकर्षित हो जाते
1: अच्छा।
0: और हमारे जो मुख्य फसल होते वो ओकर सुरक्षित हो जाते
1: हैं। अच्छा ये तकनीक ला अपना
0: जी, जी।
1: है ना बहुत अच्छा उत्पादन तकनीक घला बता दे आप मन ये ला अपना है हमारे किसान भाई मन। जब उत्पादन के बात करते छन तो उत्पादन के तो बात बताई दी है अपन किस्म के आधार पे पर तभो ले एकड़ पाछू हेक्टेयर पाछू अगर ये तकनीक ला अपना थे हमारे किसान भाई मन तो कतेक उत्पादन ले जा सकत हवे हमारे किसान भाई मन ला बता देता।
0: जी जी जैसे कि आप मतलब मैं शुरू में किस्म के हिसाब से बता रहे हूँ तो 125 से 135 दिन में ये हमारे जो फसल है उत्पादन देते और उत्पादन के बात करबो तो लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भिंडी के फसल से किसान भाई मन उत्पादन प्राप्त कर सकते है। और उत्पादन के अगर हम कम से कम भी कीमत आगबो मान लेवा 1500 रुपए क्विंटल भी जोड़थन तो हमारे किसान भाई मन ला 3 से 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के दर से निश्चित रूप से मुनाफा फायदा हो भिंडी के फसल लगाए से।
1: बहुत अच्छा विषय रही सब भिंडी रमकेरिया के उन्नत उत्पादन तकनीक ए विषय में जानकारी दिया हमारे स्टूडियो में आया बेरा वक्त में ऐसा जानकारी देते रही है। आज जो जानकारी दिया स्टूडियो में आया कर बार डॉक्टर प्रमिला जोगी जी आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद महंगू भैया।
2: भिंडी के उन्नत उत्पादन तकनीक विशेषज्ञ रही डॉक्टर प्रमिला जोगी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय मुंगेली इंकर से गोट बात करी महंगू भैया।

0: अरे सुन तो।
1: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
0: किसको?
1: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
0: अच्छा ये बात है?
1: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
0: अब तो झट से बात हो जाती है।
1: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
0: हाँ।
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: तो भाई, यदि बिलासपुर के मंडी भाव सुनी, धान महमाया बिलासपुर मंडी मेरी से आज 2400 रुपया आज ज़्यादा नहीं मिले है। मौसम के बात करबो तो आज बिलासपुर के तापमान रही से अधिकतम 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही से 25.0 डिग्री सेल्सियस। अवैया 48 घंटा के अंदर प्रदेश के कई स्थान में भारी ले भारी वर्षा हो के चेतावनी घला बताया जाते आओ गाज गिरे के संभावना घला है। तो बिल्कुल आप मन सचेत रहो किसान भाई हो, नदी मन उफान में चलत है, ऐसा बेरा में आप मन नदी किनारे रहो या सबो संगवारी भाई बहनी मल ही कहबो कि आप बिल्कुल नदी से दूरी बना के रखो। एक संग किसानवाड़ी कार्यक्रम ले भाई देखो जाए के बेरा हुआ थे, आगू बेरा फिर भेंट भलाई हो ही तो दो विदा जीवन भैया ला किसानवाड़ी कार्यक्रम ले घर जाए के जय जोहार राम राम। किसान के प्रायोजक हवा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नूरजहां के गाए कुछ गीत।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा।

0: बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं नूरजहां के गाए कुछ गीत। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: नक्षत्र कभी डूबते नहीं, वे बस हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, उनकी चमक के आकाश में हमेशा बनी रहती है। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस कलाकार को जिसने हिंदी सिनेमा को उसका पहला सुपरस्टार दिया। एक ऐसा अभिनेता जिसकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जिसकी गर्दन झुकाकर मुस्कुराने की अदा युवाओं का अंदाज बन गई और जिसकी आंखों में भावनाएं शब्दों से कहीं अधिक गहराई से उतरती थी। जी हाँ श्रोताओं, आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं राजेश खन्ना का। 18 जुलाई यह तारीख सिर्फ एक पुण्यतिथि नहीं बल्कि उस सितारे को याद करने का दिन है जिसने भारतीय सिनेमा के आकाश को वर्षों तक अपनी चमक से रोशन रखा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लौट चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब सिनेमा के पोस्टरों पर एक मुस्कान ही फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाती थी।
1: हसीना से मुलाकात हो गई

0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

श्रोताओं, किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसके चाहने वाले होते हैं। राजेश खन्ना के प्रशंसकों की दीवानगी की मिसालें आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि युवतियां उन्हें अपने खून से खत लिखती थी, उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान मिलते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार होता था। 1969 में आई फिल्म आराधना ने न केवल एक अभिनेता को सुपरस्टार बनाया बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय भी लिख दिया। आइए उसी फिल्म का वह अमर गीत सुनते हैं जिसे सुनते ही पहाड़ों पर दौड़ती ट्रेन और जीप में बैठे राजेश खन्ना का वो गाता मुस्कुराता चेहरा याद आ जाता है।

वाह क्या गीत है श्रोताओं, कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, वे समय के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। श्रोताओं क्या आप जानते हैं राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। बाद में उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ, जहां अभिनय का सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा। 60 के दशक में आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता, जिसमें जीतने के बाद उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खुले। शुरुआत आसान नहीं थी, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली, लेकिन फिर आया वर्ष 1969 और उसके बाद जो हुआ वो भारतीय सिनेमा

इतिहास में शायद ही कभी दोहराया गया। लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आराधना, दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, सफर, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, ऐसा लगा मानो सफलता ने उनका हाथ थाम लिया हो। श्रोताओं, फिल्म जगत के जानकार बताते हैं कि निर्माता अपनी फिल्मों की रिलीज की तारीख बदल देते थे। यदि उसी दिन राजेश खन्ना की फिल्म आने वाली होती, उन्हें भरोसा होता था कि दर्शकों की पहली पसंद वही होंगी। यह लोकप्रियता केवल अभिनय की नहीं थी, ये दर्शकों के विश्वास और प्रेम की कमाई थी। श्रोताओं, राजेश खन्ना की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था उनकी आवाज नहीं बल्कि उनकी आवाज बन चुके गायक किशोर कुमार। किशोर कुमार की गायकी और राजेश खन्ना की अदाकारी, ये जोड़ी आज भी हिंदी फिल्म संगीत की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है।

श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो केवल सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। और जब बात राजेश खन्ना की हो तो हर गीत उनके व्यक्तित्व का एक नया रंग सामने ले आता है। दोस्तों, अभिनय केवल संवाद बोलने का नाम नहीं होता, कभी कभी एक खामोशी, एक मुस्कान या आंखों की नमी भी बहुत कुछ कह जाती है। राजेश खन्ना इसी कला के उस्ताद थे। वे कैमरे से अभिनय नहीं करते थे, वे कैमरे से जैसे बातें करते थे। यही कारण था कि पर्दे पर उनका हर दृश्य दर्शकों के दिल में उतर जाता था। साल 1971 में आई फिल्म आनंद केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो जानता है कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं है, फिर भी वह हर पल मुस्कुरा कर जीता है और दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटता है। उनका वो संवाद आज भी उतना ही लोकप्रिय है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यह संवाद आज भी लाखों लोगों को जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं उसी फिल्म आनंद का एक ऐसा गीत जिसे सुनते हुए लगता है जैसे जिंदगी स्वयं हमसे सवाल कर रही है।

सचमुच दोस्तों, जीवन का सफ़र कैसा होगा कोई नहीं जानता। शायद यही वजह है कि सफ़र फिल्म का ये गीत हर पीढ़ी को अपना सा लगता है। दोस्तों, राजेश खन्ना ने न केवल भावनात्मक राजेश खन्ना ने केवल रोमांटिक भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने भावनात्मक, पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर भी बनी फिल्मों में अपनी अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों का जिक्र होगा, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना का नाम जरूर लिया जाएगा। आराधना, अमर, प्रेम, सफ़र जैसी फिल्मों में दोनों की सहज केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों में बस गई। साल 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम राजेश खन्ना के अभिनय की श्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म का एक संवाद आज भी लोगों की जुबान पर है, पुष्पा आई हैड टीयर्स। मजे की बात यह है दोस्तों कि ये संवाद जितना सरल था उतना ही अमर हो गया। आज भी किसी की आंखों में आंसू देखकर लोग मुस्कुराते हुए यही संवाद कहते हैं। और अब सुनते हैं अमर प्रेम का एक ऐसा गीत जिसमें दर्द भी है, अपनापन भी और जीवन का गहरा दर्शन भी है।

वाह क्या बात है दोस्तों, ये गीत आज भी हमें सिखाता है कि दुनिया की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए अपने रास्ते चलते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, राजेश खन्ना की लोकप्रियता का एक और बड़ा कारण ये था कि वे अपने हर किरदार में बिल्कुल आम इंसान जैसे लगते थे। उनकी एक मुस्कान बनावटी नहीं लगती थी, उनका दर्द अभिनय नहीं लगता था, और शायद यही सच्चाई उन्हें करोड़ों दिलों के करीब ले आई। दोस्तों, कलाकार अपनी पहचान बनाता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो एक युग बन जाते हैं। राजेश खन्ना ऐसे ही एक कलाकार थे। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने लगातार 15 एकल सुपरहिट फिल्में देकर भारतीय सिनेमा में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी चर्चा आज भी होती है। यही वो दौर था जब सुपरस्टार शब्द सचमुच उनके नाम का पर्याय बन गया। शर्मिला टैगोर, मुमताज, हेमा मालिनी, टीना मुनीम और भी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना अपने प्रशंसकों के पत्रों को महत्व देते थे। उन्हें मिलने वाले हजारों पत्रों में से कई पत्र वे खुद पढ़ते थे। यह उनके और उनके चाहने वालों के बीच एक अनोखा रिश्ता था। वे मानते थे कि किसी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी उसके दर्शकों का प्रेम होता है। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हमने उस महान कलाकार को नमन किया जिसने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों को हंसाया, रुलाया और जीवन को एक नया दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। इसी भाव के साथ आज की रजनीगंधा

कार्यक्रम से ऐश्वर्य को दे अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी बिलासपुर। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, क्योंकि जैसा आनंद ने हमें सिखाया है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या दिल्ली से रिले की जाएगी।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमरीका का युद्ध।

0: तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोर्गोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थीं। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह

0: ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key

अभी समाचार संध्या दिल्ली से रिले की जा रही थी। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था स्वर्ग नर्क।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाता

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ी, फिल्म का नाम शरीफ बदमाश।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था शरीफ बदमाश। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज फिल्म ब्लैकमेल के लिए, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म यकीन के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनके गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपिंदर

भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपेंद्र को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपेंद्र की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपेंद्र सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपेंद्र को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सबके बीच भूपेंद्र सिंह।

0: मुझे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन दो बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आरडी बर्मन से हुई, और उसके बाद आरडी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आरडी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गीत

बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

रवि वर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्त

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीति।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड

सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार। पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। आप सभी को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सावन की फुहारें चारों ओर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। कहीं भीगती गलियां हैं तो कहीं बारिश के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी एक दिल ऐसा है जो किसी अपने की याद में खोया हुआ है। मौसम मुस्कुरा रहा है, मगर उसकी आंखें किसी के इंतजार में रास्ता देख रही हैं।

0: श्रोताओं, सावन का मौसम जहां प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन

रे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है जहां साथ था, बातें थी और ढेर सारी मुस्कानें थी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सावन के इस रिमझिम में एक उम्मीद भी छुपी होती है, शायद कोई खबर आए, शायद कोई आवाज सुनाई दे, या शायद अचानक कोई याद ही दिल को सुकून दे जाए। इंतजार कभी आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

बाहर सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता रहता है।

जिंदगी यादों में ही ठहर जाने वाली है। जब जब बादल गहराएंगे, दिल के खालीपन को छू जाएंगे। कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की, बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की बूंदे यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें यूं ही महकती रहें, और दिलों में बसी उम्मीदें हमेशा रोशन रहे।

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा

0: शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।